Hi dear friends, welcome to Lamhe program. This is your RJ Chetan. सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफल होने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब हम जीवन में अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि मेहनत का साथ कभी मत छोड़िए। जिस दिन आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, उस दिन आप जरूर सफल होने की तरफ पहला कदम बढ़ा देंगे। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस मंत्र और इस सार से जुड़ी ये एक प्रेरक कहानी हम आपको सुना रहे हैं। एक जंगल था जहां सुनहरे पंखों वाले बहुत सुंदर चिड़िया रहती थी। वह पेड़ के तनों में रहने वाले कीड़ों को खाती थी, यही उसका प्रिय भोजन था। एक दिन वो भोजन की तलाश कर रही थी।

जल्दी जा रहा हूँ ताकि बाजार बंद न हो जाए। ये सुनकर चिड़िया को ख्याल आया कि उस व्यक्ति को सुनहरे पंख चाहिए और उसे खाने के लिए तने के कीड़े। एक दूसरे की आवश्यकता को पूरे करने के लिए हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। चिड़िया ने सोचा कि क्यों न वो इसे खुद का एक पंख देकर ये बॉक्स ले ले। ऐसे में उसे भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। चिड़िया ने उस व्यक्ति से कहा कि ये बॉक्स वो उसे दे दे, इसके बदले में वो उसे एक सुनहरा पंख दे देगा। वह व्यक्ति भी इस बात पर तैयार हो गया क्योंकि उसे बाजार तक नहीं जाना पड़ा। चिड़िया ने उसे अपना एक पंख दिया और बॉक्स ले लिया। सिर्फ यही नहीं, उसने उस आदमी को रोज सुनहरा पंख देने का वादा किया और बदले में कीड़े लाने के लिए राजी कर लिया। इससे चिड़िया को बिना किसी मेहनत के रोजाना कीड़े मिलने लगे। वह रोज अपना एक पंख तोड़ती और कीड़े लेकर अपनी भूख मिटा लेती। लेकिन धीरे धीरे उसे उड़ने में परेशानी होने लगी क्योंकि उसके पंख खत्म होने लगे थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके सभी पंख खत्म हो गए। वे उड़ने में भी असमर्थ हो गई। पंख न मिलने पर उस आदमी ने उसके लिए कीड़े लाना बंद कर दिया। चिड़िया लाचार हो गई थी, वह खाना तलाशने में भी न जा सकती थी। कुछ ही दिनों में चिड़िया भूख प्यास से तड़प कर मर गई। तो दोस्तों, आपको ये मैसेज तो समझ में आया ही होगा। क्या सफलता का शॉर्टकट भी होता है? कैसे? होता तो है, लेकिन फिल्मों में। इसी कारण आज हर युवा बिना मेहनत करे रातों रात अमीर बनने के सपने देखता है, जिस कारण उसको सामान्य कार्य करने का कोई रुचि नहीं रहता। ज्यादा फिल्म देखने के बाद हम जिंदगी में कुछ इन चीजों की उम्मीद करते हैं। अमीर लड़की को हमेशा प्यार हो जाएगा, जो कि इकलौती होगी, पढ़ी लिखी होगी, परी की तरह सुंदर भी होगी, तो शादी के बाद में अरबपति बन जाऊंगा, कोई रियलिटी शो जीतकर रातों रात अमीर बन जाऊंगा। तो वीडियो सोशल मीडिया पे डालकर न केवल दोस्तों में पॉपुलर होने के सपने, बल्कि ये उम्मीद करते हैं कुछ हफ्तों में मिलियन व्यूज आ जाएंगे। 500 रुपए शेयर बाजार में निवेश करके ख्वाब देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक अच्छा किस्सा सुनाऊंगा। किसी ने शेयर मार्केट के क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। पता चला वो क्लासेस चलाने वाले सर खुद लॉस में है और वो अपना लॉस कवर करने के लिए क्लासेस चला रहे हैं। सोशल मीडिया पे काफी दिखावा चल रहा है। उनका लक्ष्य आपको आकर्षित करके कोर्स या कुछ प्रोडक्ट को बेचना है। ऐसे ही विचार आज के युवाओं को मानसिक तौर पे बर्बाद कर रहे हैं। आमतौर पर सफलता को पैसे से या भौतिक सुख सुविधाओं से जोड़कर देखा जाता है। अगर आपके पास पैसे हैं, आपका नाम है, तो आपको सफल व्यक्ति मान लिया जाता है। लेकिन ये सफलता की परिभाषा नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के अनुसार सफलता के मायने बदलते हैं। एक सन्यासी की सफलता ईश्वर को पाने में है, एक विद्यार्थी की सफलता उसके पास होने में है, एक गरीब की सफलता खुद की भूख मिटाने में है, एक मरीज की सफलता उसके स्वस्थ होने में है। हम अपने आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शक्ति के अनुसार ही हम अपना लक्ष्य बनाते हैं, और जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो हमें एक जीत का एहसास होता है जो हमें सच्चा सुख देता है। यही सफलता कहलाता है। एक बार एक लड़का गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने दादी जी के पास गांव आया। एक दिन जब वह अपने दादी जी के साथ बिताता था, तो उसने अपने दादी जी से एक सवाल पूछा कि सफलता का राज, सीक्रेट टू सक्सेस क्या है। इस पर दादी जी ने उसे पास ही की एक नर्सरी में जाकर वहां से दो पौधे खरीद लाने को कहा। उन्होंने एक पौधा घर के अंदर और एक पौधा घर के बाहर लगाने को कहा। उस लड़के ने ऐसा ही किया। बाद में दादी जी ने अपने पोते से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इन पौधों में से सबसे अधिक सफल कौन होगा? लड़के ने जवाब दिया कि घर के अंदर जो पौधा लगाया है वो ज्यादा सफल होगा, क्योंकि वो प्राकृतिक खतरों से बचा रहेगा, जबकि बाहर जो पौधा लगाया गया है उसको काफी चीजों से खतरा है। दादी जी अपने पोतों की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। कुछ दिनों बाद लड़का वापस शहर चला गया। कुछ साल बाद जब वह लड़का वापस दादी जी से मिलने आया अपने गांव, तो उसने अपने दादी जी से पौधे के बारे में पूछा। दादी जी ने उसे घर के अंदर लगाया गया पौधा दिखाया। वो पौधा

अब एक बहुत बड़ा पौधा बन चुका था। लड़के ने अपने दादीजी के ओर देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि यही पौधा ज्यादा सफल होगा। वैसे बाहर वाले पौधे का क्या हुआ? दादीजी उसे बाहर लेकर आई तो लड़का हैरान हो गया। बाहर वाला पौधा अब एक विशाल पेड़ बन चुका था। उसने दादीजी से पूछा कि ये कैसे संभव है कि बाहर वाला पौधा एक बड़ा पेड़ बन गया और अंदर वाला पौधा उतना विकसित नहीं हो पाया, जबकि अंदर वाला पौधा प्राकृतिक खतरों से सुरक्षित था। दादी जी ने उसे बताया कि जीवन में खतरों से जूझकर ही सफलता हासिल होती है। सफलता का राज, सीक्रेट टू सक्सेस यही है। कहानी का तर्क यही है कि मुश्किलों का सामना करने वाले को ही सफलता मिलती है। इसीलिए कहा गया है, लहरों से डरकर नदियां पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। With this wonderful motivational story, this is Chetan signing off for today. I'll get back to you in our next program. Till then, have a great time. Bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नहीं, लेकिन बीच में अमावस आ जाए।

0: होता तो कभी भी अपनी बेटे की ये बात स्वीकार नहीं करता, लेकिन वो उन्होंने कहा कि बेटे की जिद पूरी करनी है, तो वो मुझे बंबई ले गए टेस्ट मैच दिखाने।
1: इंदौर से बंबई ले गए।
0: पैसे थे नहीं, जैसे तैसे टिकट कैसे जुगाड़ किया होगा, यहां से बंबई कहते थे जब बंबई जाने का, बंबई गए। उनको पता नहीं था कि अगर 50,000 लोग बाहर प्रतीक्षा करते हैं तो 50,000 लोग अंदर भी बैठे हैं, और 50,000 लोग अंदर घुसने की प्रतीक्षा में बाहर खड़े हैं। तो उनको लग रहा था कि बंबई जाएंगे, टिकट दिलाएंगे। वो पिता थे, उनको ये बेटे में दिलचस्पी थी, क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो मुझे ले गए। और वहां जाकर हम पिता पुत्र 4 दिन तक स्टेडियम, ब्रेबोन स्टेडियम
1: जी
0: के चक्कर काटते थे, और टिकट का जुगाड़ हुआ नहीं। चौथे दिन एक पुलिस वाले को हम पर दया आ गई
1: जी।
0: उसने कहा कि अरे मैंने आपको पहचान लिया है, और जुगाड़ नहीं हुआ क्या? तो बाबूजी कहता था पिताजी को, उन्होंने कहा कि देखिए मेरी तो कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बच्चे का दिल टूट जाएगा, हम बहुत दूर से आए हैं, इंदौर से आए हैं, तो जैसे तैसे ये मैच देख ले। तो उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, चाय पान के समय जो बाहर आता है ना रेला, चाय पीने और मूंगफली खाने, तो मैं जब वापस जाएगा रेला तो मैं इस बच्चे को अंदर ठेल दूंगा, लेकिन आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, आपको अंदर नहीं जाने दूंगा।
1: अरे बाप रे।
0: अब देखे आदरणीय पिताजी बाहर खड़े रहे, मैं 13 साल का था, इतनी संवेदना भी नहीं थी कि पिताजी बाहर खड़े हैं।
1: जी।
0: मैं अंदर फुदकता हुआ चला गया खुशी में।
1: गजब।
0: और अंदर जाकर जो दृश्य देखा, मैंने देखा 50,000, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा है, कोई भारत माता की जय के नारे लगा रहा है, कोई तरह तरह के फोटोग्राफ्स लेके ऊंचे दिखा रहा है, प्ले कार्ड्स दिखा रहा है, और ढोल मजीरे बज रहे हैं, तरह तरह की ड्रेसेस पहनकर लोग खड़े हैं। तब मेरी निगाह पड़ी कमेंट्री बॉक्स पर।
1: वाह।
0: तो मैंने किसी से पूछा कि यार ये कमेंट्री कौन कर रहा है यहाँ पर? तो उन्होंने कहा बॉबी तेलियारखा और विजय मर्चेंट यहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं,
1: लेजेंड लोग।
0: मैंने जगह देखी तो मेरे दिल में एक हुक सी उठी कि यार क्या जगह है, राइट इन लाइन विद द विकेट, बिल्कुल विकेट की लाइन में है, बर्ड्स आई व्यू, पक्षी जैसे मैच देख रहा है, सीधी लाइन में स्विंग और सीम और सब कुछ दिखाई दे रहा है, गजब की जगह। मन में एक विचार आया कि क्या कभी यहां बैठने का मौका मिलेगा। और देखिए जंगली सपने भी कभी कभी कैसे सच होते हैं, कि मैंने अपनी जिंदगी का पहला टेस्ट मैच उसी ब्रेबोन स्टेडियम से, उसी कमेंट्री बॉक्स से सन 1972-73 में तब किया जब टॉनी लुइस की टीम भारत आई।
1: 12 बरस लग गए।
0: तो 12 बरस लग गए। आप देखिए कि कैसे ये काम हो। इसलिए जो कलाम साहब कहते हैं ना कि सपने देखो तो खुली आंखों से देखो,
1: वाह वाह,
0: अगर बंद आंखों से सपने देखोगे तो सपना टूटने के बाद वो बिखर जाएगा, लेकिन जब आप खुली आंखों से सपना देखोगे तो उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो शायद वही बात थी कि वो सपना मैंने देखा कमेंट्री बॉक्स का, वो जाकर अब पूरा हुआ। अब इसमें दो बातें हुई साहब, देखिए जूनस जी, मैं कहना चाहता हूँ, एक तो ये कि खुली आंखों से सपना देखा, और दूसरी बात उस पिता का सहयोग जो 90 मिनट तक बाहर खड़ा रहा और वापस आने की प्रतीक्षा में इसलिए उसी जगह खड़ा रहा जो कि कहीं बच्चा गुम न हो जाए वापस आने पे, इतनी भीड़ भड़क्के में।
1: जी
0: बंबई के बारे में कुछ जानता ही नहीं, ये वापस आएगा तो भीड़ में गायब हो जाएगा, तो वहीं खड़े रहे। और जब मैं वापस आया तो मुझसे ज्यादा खुश मेरे पिताजी थे,
1: कितनी
0: कि चलो बच्चे ने मैच देख लिया। तो मैं हमेशा आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि दुनिया में दो ही ऐसे व्यक्ति होते हैं, माता पिता, जो कि आपसे किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में नहीं रहते, वो चाहते हैं कि उनसे भी बेहतर आप करें, ऐसे दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होता। तो जब भी आप बड़े हो जाएं, कॉलर ऊंचे मत करिए, माता पिता को कभी मत भूलिए।
1: क्या सुंदर बात कही। और आपने कहा कि पिताजी को आप बाबूजी कहा करते थे, तो मुझे गुलजार साहब का गाना याद आया, बचपन के एक बाबूजी थे, अच्छे प्यारे बाबूजी थे, एक था बचपन। तो इस गाने की यहां पर जगह बनाते हैं।

0: सुशील जी, 1959-60 में हम हैं, जहां पर आप ब्रेबोर्न स्टेडियम में 90 मिनट मैच देखते हैं और पिताजी बाहर इंतजार करते हैं और आप एक रोमांच लेकर बाहर लौटते हैं। यहां से आगे की कहानी?
1: नहीं, उसके बाद तो क्या, फिर वक्त बीतता गया, क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी बढ़ती रही जैसे आपने कहा,
0: और पढ़ाई साथ में चलती
1: रही। विज्ञान का विद्यार्थी था, मेरा हिंदी का विद्यार्थी नहीं रहा
0: जी,
1: लेकिन अपने खुद की खुशी से मैं बड़े बड़े उपन्यास, यानी कि जयशंकर प्रसाद का छायावाद, महादेवी वर्मा है ना, या सुमित्रा नंदन पंत, इन सबका खूब अध्ययन किया मैंने, और धर्मवीर भारती जी की किताबें पढ़ी, सारे उपन्यास उनके पढ़े, गुनाहों का देवता, ये सब महादेवी वर्मा की सारी किताबें पढ़ डाली, तो ये तमाम चीजों से मेरी हिंदी बराबर बनी रही। हिंदी के प्रति मेरा एक विचित्र तरह का प्रेम बना रहा, एक रिश्ता बना रहा, मुझे लगा कि हिंदी मुझे खींच रही है, तो यहां से मेरी हिंदी की बुनियाद पड़ी। और
0: यहां बीच में थोड़ा सा रुकूंगा, आगे चल के धर्मवीर भारती से एक नाता बना, उसका जिक्र थोड़ा सा फ्लैश फॉरवर्ड करके करते हैं।
1: हाँ जी,
0: जब वो धर्मयुग के संपादक थे।
1: नहीं बिल्कुल, धर्मयुग में मैं जब लिखना शुरू किया 1968-69-70 के आसपास, तब उनको लगा कि हिंदी, देखिए धर्मवीर भारती जी से हमारा कोई रिश्ता तो था नहीं, उनको लगा कि मुझे उस तमाम व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, उस हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए जो हिंदी का काम कर रहा हो, उनके दिल में बस एक ही तमन्ना थी। तो जसदेव सिंह और मुझे उन्होंने काफी प्रोत्साहित किया, उन्होंने काफी लिखवाया भी, तब धर्मयुग घर घर में धर्मयुग जाता था, प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी, तो उन्होंने हमसे काफी लिखवाया। और बाद में जब 1979 का, जिसका मैं जिक्र बाद में करूंगा, जब वापस आया ना, उन्होंने मुझे गले लगाया, घर बुलाया और कहा कि भाई आज तुमने हिंदी का नाम रोशन कर दिया।
0: वाह वाह,
1: तो ये जो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलता कि धर्मवीर भारती जी जैसा व्यक्ति, जिनसे मिलने को लोग लालायित होते थे, वो मुझे स्वयं घर बुला रहे।

0: उस समय बहुत बड़ी बात होती थी।
1: बिल्कुल, तो हम वापस स्कूल के जमाने में चलते हैं जहां आप धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत वगैरह को पढ़ रहे हैं, और हिंदी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रुचि है, लेकिन धारा विज्ञान के छात्र की है और रास्ता इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है।
0: हाँ, उस समय क्या होता था कि गरीबी के दिन थे, मैंने आपको बताया, किताबें थी नहीं, पैसा था नहीं, हमको लगता था कि भाइयों के जो स्लाइड रूल है, उनकी जो किताबें हैं, उनके जो कपड़े हैं, वो हमारे काम आ जाएंगे। तो एक मुद्दा ये भी था कि पैसे खर्च नहीं होंगे और ये कमजोर है तो बड़े भाई पढ़ा भी देंगे इनको, और उन्होंने पढ़ाया भी खूब, मेरी खोपड़ी में बहुत कुछ घुसाने की कोशिश की इंजीनियरिंग की, जैसे तैसे मैं पास भी हुआ, लेकिन ये समझिए कि पांचों साल सप्लीमेंट्री लाकर पास हुआ मैं, बड़ी मुश्किल से पास हुआ, लेकिन इंजीनियर मैं बन गया। शक्ल सूरत से मैं लगता नहीं कि पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं इंजीनियर हूं।
1: जी जी,
0: तो इंजीनियरिंग पढ़ने से एक बात हुई कि मुझे तकनीकी चीजें समझने में बहुत सहूलियत हुई। क्या होता है, जो शिक्षा होती है ना, ये आपके दरवाजे खोलती है।
1: बहुत सही।
0: तो ये आपको चीजों को ग्रहण करने में मदद देती है। तो इंजीनियरिंग पढ़ने से क्या हुआ कि गेंद का एरोडायनामिक्स बहुत आसानी से समझ में आ गया, कि कोई गेंद स्विंग होती है तो क्यों होती है, सीम के सहारे कट क्यों होती है, सीम पर पड़ती है तो उसका व्यवहार कैसा रहता है, पिच में नमी रहती है तब क्या होता है, तमाम चीजें समझने में बहुत आसानी हुई। तो इंजीनियरिंग कि पढ़ाई में भले ही मैं बहुत बड़ा विद्वान न रहा, लेकिन उससे बहुत सारी चीजें समझ में आई। और दूसरी बात यह कि जो आसपास के दूसरे कमेंटेटर्स होते थे ना, उन पर दबदबा रहता था कि भाई ये तो इंजीनियर है,
1: वाह,
0: ये गलत बात नहीं करेंगे। तो ये भी एक जरा एहसास रहता था मन में
1: जी,
0: कि भाई हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं।
1: जी, आपके बचपन किशोर युवा वाले दिनों में इंदौर क्रिकेट का एक गढ़ था, कुछ बड़े क्रिकेटर वहां से आते हैं, उनसे किस तरह का कनेक्शन रहा या देखना रहा उनको?
0: बिल्कुल ठीक है, आपने कर्नल सीके नायडू साहब, उनसे मेरी मुलाकात, पद्मभूषण, जो अकेले पद्मभूषण क्रिकेट के उस समय, पहले वाले पद्मभूषण उस समय, तो उनके घर पे भी काफी जाता था, उनके परिवार से काफी रिश्ता था, और उनका आखिरी इंटरव्यू मैंने किया था जो स्पोर्ट्स एंड पास टाइम में कवर स्टोरी के रूप में छपा था उस समय, इलस्ट्रेटेड वीकली में भी मैंने उनके बारे में लेख लिखा था। तो मैं हिंदी में लिखता था, मेरे बाबूजी जो थे वो अंग्रेजी में अनुवाद करते थे, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, अपने समय के भी काम थे। जिस गांव से वो आते थे, प्रतापगढ़ राजस्थान से, जहां मेरा जन्म हुआ, लेकिन बाद में मैं इंदौर आ गया, लेकिन वहां पर कोई अकेले भी काम रहे होंगे, तो उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी थी कि उसका मुझ पर भी बहुत प्रभाव पड़ा कि छोटे वाक्य, ग्रामेटिकली सही वाक्य, व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य। उनका हमेशा यह कहना था कि हिंदी भी अगर बोलो या लिखो तो व्याकरण की दृष्टि से सही बोलो या लिखो। ये चीज मेरे मन में गहरे तक समा गई थी, और इसी कारण मैं जब भी लिखा या बोला ना, जब भी मैंने कमेंट्री भी जब की, तो मैंने व्याकरण को बड़ा ध्यान रखा, और इसी कारण मेरी हिंदी जो लोग कहते हैं काफी शुद्ध रही। तो अब लोग कह रहे हैं तो मैं मानता हूं कि शायद शुद्ध रही होगी।
1: जी, अपने बचपन के जमाने में फिल्मों से कैसा कनेक्शन था? क्योंकि इंदौर में मुझे याद है कि मैं एक दिन सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम साहब का इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने पूरी टॉकीजों का बताया, ये यहां थी, यहां अंग्रेजी फिल्में लगती थी, यहां हिंदी फिल्में लगती थी, यहां मॉर्निंग शोज होते थे। आपका फिल्मों से कैसा?
0: नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत। मैं तो शाम को 8-9 बजे के सेकंड शो देखने ही चला जाता था।
1: गजब।
0: मतलब पिक्चर तो एक आदत की तरह हो गया था कि कोई भी, या तो बाद में जब शादी हो गई तब भी पत्नी को भी काफी शौक था फिल्मों के प्रति, तो हम लोग शाम पड़ते ही हमारे कदम ऐसा लगता था कहीं जाकर देखें, ज्योति टाकेज या प्रकाश टाकेज या फिर एलोरा टाकेज, जहां अब तो रहे नहीं टाकेज, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन गई हैं, लेकिन वहां जाकर फिल्में देखने का बहुत शौक रहा। और सलीम साहब से तो मेरी मुलाकात भी हुई
1: जी,
0: कई बार मुलाकात हुई, एक इंदौर में एक समारोह में साथ में मिले थे, और मुझे बहुत बहुत जीवंत व्यक्ति। जावेद साहब से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सलीम साहब से जरूर मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई, और एक बार मुंबई शहर में भी करसन घावरी साहब के बड़े मित्र हैं जो पुराने क्रिकेटर हैं, तो जब एक बार कमेंट्री के लिए आया तो घावरी साहब ने कहा कि यार अपन लोग बैठते हैं, सलीम साहब भी याद कर रहे हैं, इंदौर का लड़का कमेंट्री करने के लिए आया है, तो सलीम साहब के दौर क्या दिलकश आदमी,
1: वाह,
0: मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि कोई इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, और बिल्कुल उसी तरह से कि हमारे साथ बैठकर उन्होंने गाने भी गाए,
1: वाह वाह,
0: और क्या आवाज उनकी, बिल्कुल लंबा खींचते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता कहीं गला फटता ही नहीं है उनका
1: जी।
0: वो दुनिया के रखवाले वाला गाना

0: उन्होंने सुनाया था,
1: क्या
0: तो वो कितना उसमें लंबी खींच जो आती है ना तांग,
1: हाँ।
0: वो पूरा उन्होंने वैसा का वैसा सुनाया।
1: तो दो इंदौरी लोग मिल गए थे
0: बहुत
1: उस दिन।
0: बहुत मजा आया। और मुझे लगता है कि इंदौरी लोग जब भी मिलते हैं ना आपस में, मालवा के लोग, इंदौर भोपाल के लोग,
1: हाँ।
0: तो जब भी
1: आप मुझे शामिल कर रहे हो
0: तो बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता है कि कोई घर के लोग
1: जी
0: मिल गए और इनके साथ खूब बात करनी चाहिए और ऐसी भाइयों की एक बढ़ोतरी हो गई है भाइयों में।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो सलीम साहब से ये जो मुलाकात का आपने जिक्र किया, इस मुलाकात की याद के नाम वो दुनिया के रखवाले सुनते हैं।

0: सुशील जी, बहुत आनंद आ रहा है आपके बचपन के गलियारों में हम घूम रहे हैं। एक चीज जो मुझे हमेशा लगती रही, आप एक बहुत नामी क्रिकेट कमेंटर रहे और हिंदी क्रिकेट कमेंट्री के संस्कार जैसे बुनियाद आपने गढ़ी है। आपने स्वयं कितना क्रिकेट खेला है ये जानना मेरे लिए बहुत दिलचस्प।
1: देखिए, स्कूल में टीम में था, स्कूल में जाकर क्रिकेट खेलता था। वैष्णव हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा हूं इंदौर में, वहां जाकर खेलता था। और उस समय गरीबी के दिन थे, मैं बार बार बताना चाहता हूं कि क्रिकेट का बल्ला खरीदने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतना शौक था कि क्रिकेट खेला। इतना समझ में आया कि जब मिड ऑफ की जगह मिड ऑन पर गेंद जाती है तो होता क्या है, बल्ला जो बल्ले का हैंडल हाथ में घूम जाता है, इस कारण मिड ऑफ का मिड ऑन में जाता है। तो ये तमाम चीजों की समझ जब आप थोड़ा बहुत खेलते हैं ना तो आपको समझ में आता है।
0: यस,
1: तो ये जरूरी है कि आप थोड़ा बहुत खेलें। ऐसा नहीं होता, सब कुछ सैद्धांतिक रूप से काम नहीं होता है इसमें, थोड़ा महसूस करते भी आना चाहिए कि कोई चीज कितनी मुश्किल या कितनी सरल क्यों होती है। तो ये एक फायदा हुआ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि ये रॉकेट साइंस नहीं है। क्रिकेट का खेल जो है ना, ये एक, अगर आप इंजीनियर हैं, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, हाई डिग्री ऑफ कॉमन सेंस अगर आप में है या क्रिकेटिंग सेंस आप में है, तो फिर आप इस खेल की बारीकियों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आजकल के कई क्रिकेटर्स ये बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास भाषा नहीं रहती है, वो कमेंट्री करते हैं तो वो कहने की कोशिश करते हैं कि साहब क्रिकेट तो हमको ही आता है, ये सब जो है ना बाकी के लोग। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए उनको पता नहीं कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, एक बहुत मामूली विज्ञान है जो अगर आप क्रिकेटिंग सेंस है तो आप उसको समझ सकते हैं।
0: जी,
1: तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूं कि भाई आप अपनी विधा पर ध्यान दीजिए और साथ ही भाषा पर भी ध्यान दीजिए।
0: yes.
1: और ऐसा मत करिए कि हिंदी में बोल रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं। अरे भाई, देश की भाषा है, अगर आप बोल रहे हैं तो वो एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपकी खुद की भाषा है।
0: बिल्कुल.
1: इसको सही बोलिए, और सबसे बड़ी बात व्याकरण की दृष्टि से सही बोलिए। क्रिकेट खेली नहीं जाती, क्रिकेट खेला जाता है। विकेट गीली नहीं होती, पिच गीला होता है। तो ये तमाम चीजें अगर आप सही ढंग से नहीं बोलेंगे तो देश की भाषा खराब होती है।
0: yes.
1: और मैं तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी ये कहता हूं कि भाई आपने देश के क्रिकेट की बागडोर या उसके राइट्स, आपने अधिकार बेचे हैं, भाषा को खराब करने के अधिकार नहीं बेचे हैं। तो ये एक देश की भाषा के प्रति उनको भी ध्यान रखना चाहिए। कोई विदेशी चैनल से इसका मतलब ये नहीं है कि देश की भाषा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखें। और क्रिकेटर्स का तो बड़ा स्वागत है, अगर वो क्रिकेट कमेंट्री के क्षेत्र में उभर रहे हैं या आ रहे हैं तो मैं तो चाहता हूं कि, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं मालूम रहती, वो बता सकते हैं। जैसे ड्रेसिंग रूम में क्या वातावरण चल रहा होगा, कप्तान क्या सोच रहा होगा, तीन स्लिप और एक गली रखे थे, शॉर्ट थर्ड मैन क्यों रखा है, शॉर्ट फाइन लेग का फील्डर अंदर रखा है तो बॉलर को लेग साइड में बॉलिंग नहीं करनी चाहिए अन्यथा चौका हो जाएगा। ये तमाम चीजें हमसे पहले वो समझते हैं, तो अपनी समझ को बरकरार रखें, लेकिन साथ ही भाषा के प्रति अन्याय नहीं करना चाहिए। देश की भाषा खराब करने का, ये नहीं समझे कि हिंदी भी कोई भाषा है क्या, कुछ भी बोल लेंगे चल जाएगा। क्योंकि अंग्रेजी में कभी आपने सुना है कि आई इज गोइंग,
0: नहीं नहीं,
1: या फिर दे इज कमिंग, तो आप कितने भी बड़े आदमी हो लोग आपको सहन नहीं करेंगे। लेकिन हिंदी में हर तरह की भाषा चल रही है, तो ये ठीक सहन नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूं कि जो इसको सहन कर रहे हैं ना, उनका भी अपराध उतना ही बड़ा है, क्योंकि गलत चीज को और खास करके भाषा के साथ अन्याय को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही, आपने बहुत बड़ी और जरूरी बात कही है। अब मैं उस जगह पर आ रहा हूं जहां पहली बार हिंदी में कमेंट्री की परंपरा शुरू होने का ऐलान होता है और सुशील जी उस रास्ते पर बढ़ने की कोशिश करते हैं।
1: नहीं, सच बात है, आपने तो भावुक कर दिया। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में चौथे साल में पढ़ता था
0: जी,
1: और उस समय खबर आई कि पहली बार हर जगह से हिंदी कमेंट्री जरूरी है। और तब रणजी ट्रॉफी मैचों की भी हिंदी कमेंट्री, मध्य प्रदेश और राजस्थान का मैच था और 15 दिन पहले कहीं से घोषणा हुई कि वो हिंदी में कमेंट्री होनी है। बड़ी ढूंढ मचाई, सबने कहा कि बेवकूफी की बात है, हिंदी जो FPS सिस्टम का खेल 22 यार्ड से जो शुरू होता है उसमें हिंदी का क्या काम। तो लोगों ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, तो मैं पहुंच गया वहां पर स्टेशन डायरेक्टर के पास कि
0: आकाशवाणी इंदौर
1: में। हाँ, मैं समझिए कि ये मामूली रहन सहन था, और मैं वहां पहुंचकर मैंने स्टेशन डायरेक्टर कहा कि मैं हिंदी में कमेंट्री कर सकता हूं और आप मुझे मौका दीजिए। तो उन्होंने मुझे देखा, मुझे याद है उनकी मुस्कुराहट अभी भी याद है
0: जी।
1: उन्होंने कहा कि बॉय सिंपली गेट आउट,
0: ओहो
1: क्योंकि पुट ऑन सम ग्रे हेयर्स एंड देन कम। और उनका सोच बिल्कुल सही था। उस समय कमेंटेटर्स 50 55 60 साल के होते थे
0: और आप 18 के थे।
1: मैं 18 साल का था, तो तजुर्बे का थोड़ा लेकर तो आइए ज्ञान, उसके बाद फिर बात करिए। तो वो ठीक कर रहे थे, उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। मुझे अपमानजनक भी नहीं लगा, क्योंकि आदत थी, गरीब थे तो शायद अपमान की आदत थी। तो वापस चले गए, कोई बात नहीं, टहलते हुए वापस आ गए। फिर वो दिन आ गया जिस दिन कमेंट्री होनी थी, कोई मिला ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक पागल सा लड़का आया था जो कमेंट्री करने की कोशिश कर रहा था, उसको बुलाकर पूछते क्या वो कर सकता है। तो मुझे ढूंढकर फिर बुलाया, तो मैं गया वहां पर और उन्होंने कहा इमेजिनरी कमेंट्री करके बताइए जरा। अब मैं तो धारा प्रवाह अंग्रेजी में करता ही था, तो मैंने कहा किसकी शैली में बताऊं, जॉन अर्नॉल्ड की शैली में बताऊं, एलन मिगलवेरी की शैली में बताऊं या ब्रायन जॉनसन की शैली में बताऊं। तो बोले अच्छा करके तो बताइए। तो मैंने अंग्रेजी में तीनों अलग अलग तरह की शैली में कमेंट्री करके बताइए। वो लोग इतने प्रभावित हुए, यार क्या गजब कमेंट्री करते हो तुम तो, लेकिन एक काम करो कि हमें तो हिंदी में कमेंट्री करनी है। अब मैं तो इसके लिए तैयार नहीं था, मुझे पता नहीं था। तो मैंने हिंदी में कुछ करने की कोशिश की, अच्छी नहीं की होगी निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था, किसी की सुनी ही नहीं थी कभी। अच्छा हुआ नहीं सुनी थी, अगर सुनता तो शायद किसी की नकल करता, क्योंकि इतना बुद्धिमान तो था नहीं मैं, कोई नकल करने को मिल जाती तो नकल करता मैं। लेकिन जब नकल करने को नहीं मिली तो फिर अकल लगानी पड़ी।
0: क्या बात।
1: तो उसमें यह हुआ कि फिर कमेंट्री की, और उन्होंने कहा कि नहीं चलो चला तो लेगा ये लड़का काम, तो मैं कमेंट्री की। और कमेंट्री की तो ये समझिए कि खाली प्याले में एक तूफान सा आ गया। लोगों ने कहा कि ये तो क्रिकेट की हत्या हो गई, किसी ने कहा कि ये जिंदगी भर कमेंट्री सीखें तो भी कमेंटेटर नहीं बन सकते। और मैं उन्हें दोष नहीं देता, शायद अच्छी नहीं की होगी निश्चित रूप से, क्योंकि एक तो उम्र भी कम थी और परिपक्वता भी नहीं थी। लेकिन कुछ था जो स्टेशन डायरेक्टर को प्रभावित कर गया, उसकी बात मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जब ये हुआ ना, इतनी ज्यादा आलोचना हुई, तो पिताजी नाराज हो गए कि देखिए अपने पास पैसा तो है नहीं और अब तुम नाम के बजाय बदनामी ज्यादा मोल ले रहे हो, या तो गंभीरता से काम करो और सोचो, अच्छा काम करो, क्रिकेटर करता क्या है उसके व्यवहार की तरफ दृष्टि डालो, उसके हाव भाव, उसका चाल कैसी चलती, क्या करता है स्ट्रोक खेलते वक्त, ये सब सोच के फिर हिंदी में सोचो, अंग्रेजी में सोचना बंद करो, अंग्रेजी कमेंट्री का भूत अपने सिर से निकालो, और फिर अगर करना हो दिल से महसूस करके दिलों को छूने की कोशिश करो। जब उन्होंने ये कहा तो फिर मैंने सोचा कि जैसे स्क्वायर कट करता है तो क्या करता है खिलाड़ी, मैंने सोचा कि पहले शॉर्ट पिच गेंद आती है, ऑफ स्टंप के बाहर आती है, बल्लेबाज अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करता है, स्ट्रोक के लिए जगह बनाता है और फिर स्क्वायर कट कर देता है चार रन के लिए।
0: वाह वाह।
1: ऐसा जब सोचा ना तो मैंने देखा कि ये तो एक वाक्य भी बन गया,
0: रिदम आया,
1: शैली भी बन गई। शैली मतलब जो कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह की शैली बन जाएगी। आज मैं चार वाक्य बोलता हूं, लोगों को पता चल जाता है कि कमेंटेटर कौन है ये। तो ये जो पहचान बनी ना, इस कारण बनी कि हिंदी में मौलिक रूप से मैंने सोचना शुरू किया। और इसका ही फल है

0: आज हिंदी में जितनी भी भाषा, जितनी भी शब्दावली बहुत सारी जो चल रही है, जैसे कि कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी के लिए मैं शंका का गलियारा मैं कहता था कि ये किसी ने भी कभी सोचा नहीं था।
1: बिल्कुल,
0: कई इस तरह के शब्द जैसे अपनी नजरों के ठीक नीचे खेल रहे हैं, ये तकनीकी शब्द लेकिन बिल्कुल सरल हिंदी में, तो बिल्कुल तकनीकी रूप से बिल्कुल सही खेल रहे हैं, नजरों के ठीक नीचे खेल रहे हैं। तो ये जो सिर बिल्कुल स्थिर रख रहे हैं जब खेलते हैं, ड्राइव करते हैं,
1: सीमा
0: तो तमाम चीजें, ये सब तकनीकी चीजें हिंदी में कभी थी नहीं।
1: आपने सीमा रेखा जैसा शब्द भी गढ़ा।
0: क्यों याद दिलाते हैं। मेरी पत्नी का नाम रेखा है।
1: अच्छा,
0: तो क्रिकेट में तो उनकी इतनी ज्यादा दिलचस्पी रही नहीं। लेकिन वो क्या हुआ कि मैंने सोचा कि पहले मैं बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए ऐसा बोलता था। मैंने सोचा कि बाउंड्री लाइन भी क्यों बोलूं। सीमा रेखा, इसका हिंदी में अनुवाद करो, सीमा रेखा के बाहर 4 रन के। ये जब बोला तो पत्नी ने आड़े हाथों ले लिया घर में आते ही।
1: अच्छा,
0: बोले रेखा तो मैं हूं, ये सीमा कौन है।
1: क्या बात है, शानदार बात है। यहां ना एक गाने की जगह बन रही है, पर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, गाना थोड़ा आगे करेंगे, लेकिन एक दिलचस्प चीज मुझे समझ में आई कि आपने अंग्रेजी में कमेंट्री करके सुनाई थी, मैं वो थोड़ा सा सुनना चाहता हूं।
0: अब क्या वो इमेजिनरी कमेंट्री करते थे कि
1: जी जी, किसकी शैली में है वो भी बताइएगा।
0: नहीं, जॉन ऑर्लेट बोलते थे जैसे कि फ्रेडी ट्रूमन कमिंग इन फ्रॉम द वेक्सल लैंड कम्स इन एंड बोल्स टू सुनील गावस्कर एंड गावस्कर फॉरवर्ड डिफेंसिवली बैक टू द बॉलर नो रन।
1: वाह, क्या ग्रेन्स, और वो जो रिदम है ना इस कमेंट्री का, ये टिपिकल अंग्रेजी रिदम है, इसको आपने नहीं अपनाया था। और इसकी बात आगे करते हैं, यहां गाना लेके आता हूं, इम्तिहान फिल्म का गाना जो आपकी जिंदगी से मेल खाता है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, सुंदर गाने की जगह बनी।

0: मैं वो बात कर रहा था कि अंग्रेजी कमेंट्री का एक माइलस्टोन तय था, एक पैमाना तय था कि ये ऐसी होती है। हिंदी कमेंट्री का आप अपना एक संसार रच रहे थे, वहां किस तरह की चुनौतियां आपके सामने थी?
1: नहीं देखिए, बहुत बड़ी चुनौतियां। एक तो कारण ये कि बहुत बड़ा वर्ग आपको सुन रहा है,
0: जी
1: 70% आबादी के प्रति आप जिम्मेदार हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी, राज सिंह डूंगरपुर ने मुझे बात बताई थी कि कभी भी कोई गलती करो ना, ये मत सोचो कि रेडियो कमेंट्री है, किसने देखा कि क्या हुआ था। आप अगर गलत भी कुछ बोल दिया तो उस पर टिके रहो, लोग ऐसा कहते हैं, कई हिंदी कमेंटेटर ऐसा सोचते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी को समझो कि आप ईमानदारी से बात करो, कि अगर लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी सत्य की इतनी ज्यादा है कि आप गलती करो तो विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो। एक किस्सा है, कानपुर टेस्ट मैच में मुझे याद है कि प्रणव रॉय बोल्ड हो गए थे, क्लीन बोल्ड हो गए थे एक गेंद पर, और किसी कमेंटेटर ने कहा कि ऑफ स्टंप से मिडिल स्टंप की तरफ गेंद आई। तो मैंने कहा कि राजभाई, वो मुझे लगता है कि मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ आई और बैट के बाहरी किनारे को भी छोड़ती हुई ऑफ स्टंप उड़ गया था। तो बोले यार चलो, राज सिंह जी ने तो वो बोला नहीं था, किसी तीसरे ही कमेंटेटर ने कहा था। लेकिन उन्होंने कहा एक काम करते हैं, लंच के समय अपन प्रणव रॉय से ही पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो हम लोग लंच के समय गए, राज सिंह जी कितने बड़े आदमी थे, देखिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट भी रहे। तो वहां जाकर प्रणव रॉय से पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ बाहर की तरफ निकल गई थी।
0: गजब।
1: तो देखिए, उस कमेंटेटर ने क्षमा नहीं मांगी, लेकिन राज सिंह डूंगरपुर ने ऑन बिहाफ ऑफ द कमेंट्री टीम उन्होंने कहा कि हम क्षमा चाहते हैं, हमसे ये गलती हो गई थी कि हम अंदर की तरफ आई और बैट और पैड के बीच में निकली, ऐसा हमने कहा था, लेकिन गेंद दरअसल बाहर की तरफ निकली,
0: उल्टा हुआ था।
1: हाँ, तो सत्य के प्रति उनकी जो आस्था थी वो मेरे दिल में घर कर गई
0: जी।
1: कि आज भी मुझसे कुछ गलती होती है तो मैं तुरंत स्वीकार कर लेता हूं, और सच मानिए लोगों को ये बात पसंद आती है
0: बिल्कुल,
1: कि आप अगर विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो, क्योंकि आपकी इच्छा तो झूठ बोलने की है नहीं, आपसे कोई गलती हुई, आप भी तो इंसान है ना, बैट्समैन से गलती हुई तो वो आउट हो जाता है, अंपायर से गलती हुई तो गलत आउट दे देता है, आप भी तो आखिर इंसान है, आपसे गलती हो सकती है, आप विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो।
0: क्या बात है। पहला बहुत ही बड़ा मैच जिसकी कमेंट्री करने का आपको मौका मिला था, वो यादें हमारे साथ बांटिए।
1: नहीं, 1972-73 का जो मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, ब्रेबोर्न स्टेडियम, तो वो तो मैं भूल नहीं सकता कि हमारे सामने ऋषि कपूर बैठे हुए थे, डिंपल कापड़िया, उस समय बॉबी फिल्म साई नहीं की थी, तब तक फिल्म आई भी नहीं थी,
0: जी जी,
1: दोनों दिख रहे, विनोद खन्ना को हमने देखा, फिर सामने बैठे थे डेविड, बिल्कुल गंजे
0: डेविड अब्राहम, हाँ,
1: तो डेविड वो अपनी भीड़ के साथ नारे लगा रहे थे भारत माता की जय, और मतलब अद्भुत दृश्य था। विनोद खन्ना को देखा हमने
0: जी,
1: कि अपने मतलब इतने आकर्षक ये लोग, कि अब मैं भी छोटा था ना, 24-25 साल का ही था, तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती थी, पहला टेस्ट मैच करता था, और सच मानिए मुझे पता ही नहीं था कि मैं अच्छा कमेंटेटर हूं या नहीं, मुझे लग रहा है कि मौका मिल रहा है कर लीजिए, तो कोई एक सपना था कि अच्छे काम की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं माता पिता की सलाह से, तो उस काम की तरफ बढ़ गए। तो ये वो एक पहला मौका, बहुत बड़ा मौका था, और कुछ गलतियां मैं करता था, जैसे 39 जैसे मालवा के लोग बोलते हैं ना,
0: जी जी,
1: है ना, 69 को,
0: हाँ,
1: तो वो शुरू शुरू में गलतियां होती थी, लोगों ने काफी प्रताड़ित भी किया फिर उसको, लेकिन सीखने की, देखिए हमेशा मैंने ये रखा कि सीखने की इच्छा रखी, गलतियां की तो सीखने की इच्छा रखो, कम उम्र थी, सीखने का मौका मिला, लेकिन धारा प्रवाह कमेंट्री करता था
0: जी जी,
1: और धारा प्रवाह तो कई बार मेरी पत्नी से लोग, उनकी सहेलियां पूछती हैं कि इतना धारा प्रवाह ये कमेंट्री करते हैं तो क्या आपके सामने भी बोल पाते हैं? उन्होंने कहा बेचारे बोल पाते होते तो वहां पर इतनी धारा प्रवाह कमेंट्री करने की जरूरत क्या पड़ती है। तो ये धारा प्रवाह का सिलसिला
0: जी
1: चलता
0: जी
1: रहा, तो एक रिदम था, सही शब्द सही जगह,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्रिकेट कमेंट्री में सबसे बड़ी बात सही शब्द सही जगह, तो चूंकि इसमें साहित्य बहुत काम आता है,
0: बिल्कुल,
1: आजकल के क्रिकेटर्स के साथ दिक्कत यह है कि साहित्य नहीं पढ़ते, पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि वो

0: रोमन लिपि पढ़ते हैं, उनको पता नहीं हिंदी साहित्य तो पढ़ते ही नहीं है। अधिकांश उसमें 90% लोग जो आज कमेंट्री कर रहे हैं
1: जी,
0: टेस्ट क्रिकेटर्स जो कर रहे हैं, उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हिंदी पढ़ें भाई।
1: बिल्कुल,
0: साहित्य पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है कि संवेदनशीलता आती है, संतुलन की भाषा। संतुलन आप कैसे आएगा, जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, सहवाग की सबसे बड़ी बात क्या थी कि संतुलन, बॉडी बैलेंस। तो ये संतुलन कमेंट्री में भी बहुत होता है। संतुलन कैसे आएगा, निष्पक्ष कमेंट्री कैसे आएगी, आज हम देखते हैं कि पक्षपातपूर्ण कमेंट्री होती है। भारत ऐसा कर देगा तो अच्छा हो जाएगा, भाई आप निष्पक्ष कमेंट्री के लिए बैठे हो।
1: बिल्कुल,
0: रिची बेनो ने भी कहा है कि आप निष्पक्षता बरती है, कमेंट्री हमेशा निष्पक्षता का काम है, आप किसी पक्ष के नहीं है। तो ये एक बात समझने की है।
1: बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें करके सुशील दोषी जी। और अब मुझे लगता है कि ड्रिंक्स ट्रॉली जैसे आती है ना क्रिकेट में, वैसे यहां पर गाना आएगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल इस कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

कानपुर और सखियों को आपने सुना फिल्म पूर्णिमा में। भरत व्यास के बोलों को सुर में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ശങ്കർ ജയകിഷൻ കി ബനായി തർസ് തീ ഫിലിം തീ ദിൽ ഏക് മന്ദിർ.
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा.
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए. 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है.
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें.
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया. अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है.
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन.
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है.
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर. रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है.
5: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है.
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी.
6: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है.
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे.
6: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग.
6: प्यार का राग सुनो रे,
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से.
6: सदा रही है, सदा रहेगी.
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती.

लता मंगेशकर और साथियों को आप सुन रहे थे। शैलेंद्र का लिखा गीत था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी, फिल्म थी दिल अपना और प्रीत पराई। आज कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं श्रोताओं अभिनेत्री मीना कुमारी पर फिल्माए गए गीतों को।

चुप रहूंगी। इस फिल्म का गीत था लता मंगेशकर मोहम्मद रफी का गाया, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था। यादों की महफिल कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, विविध भारती की सुर लहरियों पर आपके रेडियो सेट पर जब ये कार्यक्रम शुरू होता है तो हम लेकर आते हैं बहुत से ऐसे नगमे जो आपके दिल में समाये हुए हैं। तो आज भी कुछ ऐसे ही नगमे हैं। वैसे हमारे श्रोताओं ने फेसबुक पर इबारत पढ़ी है और वो समझ ही चुके हैं कि आज इस कार्यक्रम में किस हसीन नाज़नीन और मशहूर अभिनेत्री के गीत हमने शामिल किए हैं। ये इबारत जो आज हमने पोस्ट की है फेसबुक पर, आपके लिए एक बार फिर से पढ़ देते हैं। उनका आना था, मौसम आशिकाना हो गया, हुस्न का वो नाज़ो अंदाज़ देख चांद जाने कहाँ खो गया, कुदरत ने न जाने कहाँ से छलकाई ये बदरिया, सौंदर्य ऐसा जैसे सावन के मौसम की रात, नगमा और शेर से छलकते हुए जज्बात उस

मह जमीन के, नरगिस के फूल सी जैसी आंखें, फिर प्यार हो जाए तो हम क्या करें। दो सितारों ने कहा, ये कौन हुस्न परी आई है जिसने तन मन के सद्बुद्ध को बेगाना कर दिया। वक्त आज भी वहीं ठहरा है, खामोशी में, कभी धड़कनों में, कभी दुआओं में तेरा इंतजार रहता है। गुलों में रंग भरे जब बाद नौबहार चले, चांद चमके खुदा करे उस रोज। यह उनकी फिल्मों के चंद नगमे हमने सुरीला सफर कार्यक्रम में लिए हैं और इन्हीं नगमों से इस कार्यक्रम को आज सजाया है। तो बताइए कि फिल्मों में आपको मीना कुमारी की अदायगी कैसी लगती थी, उनकी फिल्मों की कौन सी यादें हैं जो आपके साथ आज भी हैं, उन पर फिल्माया गया कौन सा प्यारा सा गीत है जो आपको आज भी बहुत पसंद आता है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर हम सभी श्रोताओं का। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार, और आपको बताना है इस गीत के संगीतकार।

ये परिंदों की आवाज और ये कौन सी खास जगह है श्रोताओं, जहां मीना कुमारी पर ये गीत फिल्माया गया, यानी स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वो आपको बताना है। और फिल्म पाकीजा का ये गीत था, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी। तो फिल्म पाकीजा जो थी वो अपने डायलॉग्स के लिए भी बहुत जानी जाती थी। इस फिल्म का कौन सा डायलॉग है जो आपको बहुत पसंद आता है, ये आप अगर लिखना चाहें तो आप लिखकर भेज सकते हैं। हमारी श्रोता ने लिखा है कि आज सुरीला सफर ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी को समर्पित है। मीना कुमारी हिंदी फिल्मों की एक ऐसी महान अभिनेत्री थी जिनके अभिनय में भावात्मक गहराई और संजीदगी थी। वे अभिनेत्री होने के साथ साथ एक उम्दा शायरा और पार्श्व गायिका भी थीं। फिल्मों में उनका योगदान अमूल्य है। वे केवल एक कलाकार नहीं बल्कि एक युग थीं जिन्होंने अभिनय को भावनाओं कि सच्ची अभिव्यक्ति के साथ पिरोया यानी बनाया। उनका नाम आज भी भारतीय सिनेमा में आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। और इन्होंने कुछ गीत भी अपनी पसंद के भेजे हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज मीना कुमारी जी के फिल्मों के गीत से सजेगी महफिल सुरीला सफर कार्यक्रम की। एक और श्रोता ने लिखा है कि अभिनेत्री मीना कुमारी जी को परिभाषित करता ये गद्यांश नजर आ रहा है जिन्होंने अभिनय को अलग आयाम से नवाजा। जी हाँ, मीना कुमारी जी की जो अदायगी थी श्रोताओं वो बहुत ही अलग थी। वैसे उन्होंने बहुत कम समय काम किया फिल्मों में, लेकिन जो सिल्वर स्क्रीन पर उनकी एक पहचान बनी वो आज भी कायम है। मीना कुमारी की जो फिल्में थी, कौन सी फिल्में आपको बहुत पसंद आती हैं और कौन सा किरदार पसंद आता है, ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की भारत में कुछ गीतों के नगीने सजे हैं जो एक महान कलाकार की याद का दिन है। मीना कुमारी जी को शत शत नमन, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उन्हें नमन किया है इस कार्यक्रम में अपने जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं उनके द्वारा। ये गीत आपको पहचानना है श्रोताओं, और बताना है इस गीत के गीतकार कौन है और मीना कुमारी जी के साथ कौन नजर आते हैं।

शंकर जयकिशन की तर्ज थी श्रोताओ लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत आपने सुना दिल अपना और प्रीत पराही फिल्म से। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, पहले फिल्म में गुलाम मोहम्मद साहब की तर्ज थी और इसमें शैलेंद्र की रचना थी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि दर्द को अगर कभी कोई चेहरा मिला तो वो मीना कुमारी थी। उनकी आंखों की खामोशी और अभिनय की गहराई सीधे दिल को छू जाती थी। उन्हें यूं ही ट्रेजेडी क्वीन नहीं कहा गया, शरत और सफलता के बीच भी उनके जीवन का अकेलापन उनकी शायरी और अदाकारी में साफ लगता था। आज भी उनका नाम संवेदनाओं और दर्द की एक अमर दास्तान बनकर याद किया जाता है। लेकिन उनकी आप जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखेंगे श्रोताओ, तो वो इतनी खूबसूरत नजर आती हैं मीना कुमारी के, और उनका नृत्य भी जैसा कि आपने इस गीत में भी देखा बड़ा ही खूबसूरत है। तो मीना कुमारी ठीक है ट्रेजेडी क्वीन के रूप में जानी तो जाती है, लेकिन उनकी जो मुस्कुराहट थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप चाहें तो जरूर लिखें इस बात को, क्योंकि वो मुस्कुराते बड़ी खूबसूरत लगती थी। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि कुछ गीत जो हैं वो समझ में आ रहे हैं, इतने गीत तो याद नहीं आ रहे फिर भी, लेकिन अब देखना है कि इनमें से कौन सा गीत हमारे जो है वो लिस्ट से मैच होता है। एक और श्रोता लिखती हैं कि इनकी फिल्में केवल देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। वो हर पीढ़ी को ये सिखाती हैं कि महान अभिनय ऊंची आवाज या भव्य दृश्यों से नहीं बल्कि आंखों में उतर आए सच्चे एहसासों से जन्म लेता है। मीना कुमारी जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी शायरी, उनकी खामोशी और उनके अमर किरदार हमेशा ये एहसास दिलाते रहेंगे कि कुछ कलाकार समय से विदा होकर भी कभी विदा नहीं होते। और आप तो समझ ही चुके हैं कि मीना कुमारी एक मशहूर शायरा भी थी और मकबूल भी थी। तो वो किस नाम से शायरी किया करती थी? क्योंकि मीना कुमारी तो वो लिखती नहीं थी और उनका एक और नाम था, बल्कि यूं कहें कि दो नाम थे। तो ये नाम अगर आपको याद आए तो आप जरूर बताएं। एक और श्रोता लिखती हैं कि ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर वो पाकीज़ा की हसीन जिनकी अंदाज वो पाकीज़ा की हसीना जिनका अंदाज बयां दिल को छू जाता था। चांद सी उनकी सूरत और उनकी जो हर कोई जो अदा होती है, लगता नहीं कि दिल मेरा उजड़े दयार में। और कुछ फिल्मों के गीत भी इन्होंने लिखे हैं, झील सी आंखें, और उनके बारे में बहुत कुछ इन्होंने अपने शब्दों से बयां करने की कोशिश की है। इस गीत में, इस फिल्म में मीना कुमारी

अभिनेता सुनील दत्त के साथ ये फिल्म थी मैं चुप रहूंगी। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में राजन कृष्ण का लिखा ये गीत आपने सुना। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस फिल्म के बारे में, इस गीत के बारे में, जो इन गीतों के बारे में जो मीना कुमारी पर फिल्माया गया उसके बारे में लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं, दिल अपना और प्रीत पराये फिल्म में उनका किरदार बहुत कम बोलता है, लेकिन करुणा के मन की पीड़ा, मौन, समर्पण और त्याग उनकी आंखों से स्पष्ट झलकते हैं। बिना कुछ कहे भी राजकुमार सुशील के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को स्क्रीन पर महसूस किया जा सकता है। जी हाँ, तो श्रोताओं, मीना कुमारी जी पर तो बहुत सारे डायलॉग हैं, आपको उन पर फिल्माया गया कौन सा डायलॉग सबसे अच्छा लगता है? एक और श्रोता ने लिखा है फिल्म के बारे में कि अजीब दास्तां है, लता मंगेशकर जी की आवाज और ऑन स्क्रीन उदासी और प्रेम की पीड़ा को अमर आवाज देता है ये गीत। इस गीत के बारे में इन्होंने लिखा है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझसे कोई ये पूछे कि मीना कुमारी जी की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, मेरा जवाब होगा मुझे उनकी सभी फिल्में बहुत अच्छी और लाजवाब लगती हैं। जी हाँ, मीना कुमारी जी ऐसी ही थी जो अपने आप में बहुत कह सकते हैं कि अलग पहचान की थी।

0: ना जाने कहां हमसे जादू ये देखो हम तुम मिले।
1: ये गीत आप सुन रहे थे जो मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया जिंदगी और ख्वाब फिल्म का ये गीत था और प्रदीप की ये रचना आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मीना कुमारी एक ऐसी अभिनेत्री जो अपने आप में एक भारतीय फिल्म में एक युग हैं। अभिनय में मीना कुमारी जी का कोई तोड़ नहीं था और साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छी शायरा भी थी। उनकी मनमोहक आंखें संवाद खासकर दर्द में डूबे तो दर्शकों के दिल में छा जाते। मीना कुमारी जी अभिनेत्री यदा कदा ही उनकी तरह होती हैं और चित्रलेखा और आरती फिल्म वगैरह के बारे में इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि जब फिल्म का प्रसिद्ध गीत चलते चलते रिकॉर्ड किया जा रहा था तब स्टूडियो में ये गीत सुनकर मीना कुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि ये गीत सिर्फ साहिबजान का नहीं बल्कि उनके अपने दिल की गहराइयों की आवाज और उन्होंने संगीतकार गुलाम मोहम्मद को बधाई दी। तो ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं श्रोताओं जो मीना कुमारी जी के बारे में जुड़ जाती हैं। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि पाकीज़ा मूवी का गीत जो है वो अच्छा लगता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि अजीब दास्तां है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म पूरा जीवन इसी तरह खत्म हो गया चाहे पाकीज़ा हो या साहब बीबी और गुलाम। तो साहब बीबी और गुलाम फिल्म की कुछ यादें आपके साथ हों तो आप उसे बांट सकते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं फिल्म मैं चुप रहूंगी मीना कुमारी हैं इसमें सुनील दत्त हैं इसमें और तमाम इन्होंने डिटेल लिखी है उन गीतों की उन उस फिल्म की। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी पर आज का कार्यक्रम है और मैं बचपन से ही मीना कुमारी जी का फैन रहा हूं। तो आपने कौन कौन सी फिल्में उनकी देखी हैं और हमने आपसे पूछा भी था कि कौन सा वो प्यारा सा डायलॉग है जो मीना कुमारी पर फिल्माया गया और आपको बहुत पसंद है और इस गीत को आपको पहचानना है।

ये आवाज आपको पहचाननी है श्रोताओं कि इस गीत को किसने गाया। नूरजहां फिल्म का ये गीत था, शकील बदायूनी का लिखा, रोशन की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि दिलीप कुमार जी को ट्रेजेडी किंग नायक के रूप में प्राप्त था ये कह सकते हैं कि तमगा, कि मीना कुमारी जी को नायिका के रूप में प्राप्त था। जितनी आसानी से वो किसी किरदार को बखूबी निभाती थी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। छोटी बहू, साहब बीवी और गुलाम फिल्म का दर्द उनकी भावना को जिस तरह से प्रकट करता है वो बहुत ही सराहनीय है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुछ चेहरे समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, कुछ चेहरे यादों की चांदनी बनकर हमेशा चमकते रहते हैं। मीना कुमारी उन्हीं विरली शख्सियतों में से एक थी। उनकी मुस्कान में मासूमियत, आंखों में अनकहे जज्बात और अदाकारी में ऐसी सच्चाई थी कि हर किरदार एक एहसास बन गया। शायद इसीलिए आज भी उनका नाम आते ही दिल में गजल सी नरमी और पुराने गीतों की मधुर गूंज उतर जाती है। अभिनेता राजकुमार के साथ

मीना कुमारी की कितनी फिल्में हैं श्रोताओं? इस फिल्म में एक और मुख्य कलाकार हैं जो मीना कुमारी के साथ हैं, वो कौन है?

दिल एक मंदिर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। मीना कुमारी पर फिल्माया गया और इस फिल्म में दो कलाकार थे, राजकुमार और राजेंद्र कुमार। यही हमने आपसे पूछा था और हमारे श्रोताओं ने बताया भी है। और बतौर बाल कलाकार जो मीना कुमारी की फिल्म आई पहली, ये थी लेदर फेस। इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है। बेबी मीना के नाम से प्रसिद्ध हुई वो। 1946 में बच्चों का खेल, 1952 में बैजू बावरा फिल्म थी, जिसके बारे में हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये फिल्म ऐसी थी जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। 1953 में रिलीज हुई परिणीता, ये भी व्यावसायिक रूप से सफल थी। और बैजू बावरा फिल्म में क्या किरदार था श्रोताओ मीना कुमारी का, ये आप जरूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज मीना कुमारी जी का जन्मदिन है, उनको अभिवादन करते हुए सुरीला सफर कार्यक्रम में ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ कहना चाहूंगा कि उनकी जो फिल्में थी उनमें आजाद कोहिनूर बहुत कामयाब रही। आज इन दो सितारों का जमीन पर मिलन है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि दुनिया के खूबसूरत ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी को समर्पित है कार्यक्रम। उनकी फिल्मों में संवाद, अदायगी, अभिनय और ऐसा तालमेल था कि उनकी आवाज में खास खनक और रूहानी दर्द छिपा हुआ था जो साधारण संवादों को भी असरदार बना देती थी। वो केवल मुंह से संवाद नहीं करती बोलती, बल्कि उनका पूरा जो शरीर था, उनकी आंखें अर्थों का बयां करती थी। और प्रतिभा के बारे में लिखते हैं कि उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो कोई अभिनय नहीं बल्कि अपने दिल की बातों को साझा कर रही हैं। फिल्म बैजू बावरा में कौन थे मीना कुमारी के साथ?

भारत भूषण मीना कुमारी के साथ थे श्रोताओं, और इसकी इस फिल्म के जो गीत थे वो भी बहुत मकबूल हुए थे। वैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि मीना कुमारी की किसी एक फिल्म को अगर आप चुनना चाहें जो आपको सबसे अच्छी लगती है, तो उस फिल्म का नाम आपको बताना है जो आपको सबसे अच्छी लगती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी भले ही ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर हुई, लेकिन उनकी कॉमेडी भी बहुत अच्छी थी। तब हालांकि उन्हें कॉमिक रोल करने का बहुत कम मौका मिला। जी हाँ, मीना कुमारी कॉमेडी रोल में भी बहुत अच्छी लगती थी, और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें उनका किरदार बहुत ही चुलबुला है, खासकर उनकी जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हैं। तो उनकी कलर फिल्में भी हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में भी हैं। वो उनकी कौन सी जो फिल्में हैं वो आपको ज्यादा अच्छी लगती हैं, यानी मीना कुमारी किन फिल्मों में ज्यादा अच्छी लगती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में ज्यादा सुंदर लगती हैं आपको या कलर में, और आपको कोई एक फिल्म बतानी है।

मीना कुमारी जी बड़ी खूबसूरत लगती हैं इस गीत में, यानी इस गजल में। श्रोताओ, नगमा शेर की ये सौगात उन्होंने किसके लिए पेश की फिल्म में, ये आपको बताना है। और ये भी आपको बताना है कि मीना कुमारी की आखिरी फिल्म कौन सी थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी जी को समर्पित ये कार्यक्रम उनसे जुड़ी सत्य घटना का जिक्र करना चाहूंगा, जरूरी हो गया है, जिससे मीना कुमारी जी की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बात फिल्म पाकिजा की शूटिंग के दिनों की है। मीना जी और कमाल अमरोही जी की कार का मध्य प्रदेश के शिवपुरी के जंगलों में पेट्रोल खत्म हो गया, तो कुछ इन्होंने जो है वो इनकी बातें लिखी है उस समय की, जो शायद ये वाकया इनके साथ हुआ होगा। और अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं उसमें ये बताना है आपको कि ये गीत एक और गायक की आवाज में है। ये फिल्म कौन सी है और वो आवाज कौन सी है, मीना कुमारी जी की आखिरी फिल्म कौन सी है।

इस गीत को मोहम्मद रफी साहब ने भी गाया है श्रोताओ, और आप सुन रहे थे भीगी रात फिल्म का ये गीत। हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा था कि मीना कुमारी जी को तो मुस्कुराते हुए कम ही देखा है, तो फिर आप इस गीत के बारे में क्या कहेंगे जो आपने सुना अभी अभी? कितनी प्यारी लगती हैं मीना कुमारी जी इस गीत में, ये आप जब इसका पिक्चराइजेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो मीना कुमारी की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में ज्यादा अच्छी लगती हैं, जिनमें उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है, तो वो अपने चेहरे के भावों से भी जबरदस्त एक्टिंग करती थी, ऐसा लगता था जैसे वो किरदार को जी रही हूँ।

फिल्म के इस गीत की झलक आपने सुनी श्रोताओ, और ये गीत किस फिल्म का है इसकी भी एक झलक आपको सुनवा देते हैं।

हमारी श्रोता ने लिखा है कि साहब बीवी और गुलाम एक बहुत ही सराहनीय मार्मिक भावपूर्ण फिल्म है, जहां तक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के शौकीन लोग हैं इसे बहुत पसंद करते हैं। जहां इसमें बहुत सुंदर लगती मीना कुमारी, सिनी जगत की मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी के गीत आज शामिल थे। सुरीला सफर कार्यक्रम में श्रोताओं, आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरीला सफर ये कार्यक्रम अब यही सम्पन्न होता है।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। वक्त दोपहर का, बारिशों की रिमझिम इन हल्की ठंडी फुहारों के साथ साथ लीजिए। आपके रेडियो सेट पर शुरू हो रहा है प्रोग्राम। श्रोताओं, आप ही के पसंदीदा गीतों का प्रोग्राम मन चाहे गीत, तो सुनिए प्रोग्राम। देखिए कहीं आपके पसंद का कोई गीत तो नहीं आज। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

सावन की ठंडी ठंडी फुहारों की तरह ये गीत हैं श्रोताओं, जो बंद हैं आपकी चिट्ठियों में, और उन्हीं में से ये गीत हमने आपको सुनवाया। दो रास्ते फिल्म का ये गीत था, जो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे। इस गीत को पसंद किया मालीवेस बीड शहर से किशोर उबाले, मंगला उबाले, और इस गीत में आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से। श्रोताओं, आइलैंड नगर केडगांव से इसी गीत को पसंद किया बाबू साहब नवथर, अक्षय चंदन, जय कुमार चंदन, सुचिता चंदन, और बसमत रोड परवणी से रणजीत कारेगांवकर, कंचन सृष्टि, समरजीत कारेगांवकर की ये फरमाइश थी। शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, पैरी पार्वती और राधा चंद्राकर की फरमाइश आपने सुनी।

मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत की धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मोहम्मद रफी की आवाज में मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म के इस गीत को पसंद किया। न्यू मार्केट टीटी नगर भोपाल से अजय और शीतल ने और जीसीएफ स्टेट परेल लाइन से ये चिट्ठी आई है। इनके नाम हैं सुरेश राजपूत, सुमित, शानू, अभय राजपूत, मन्नत राजपूत, पुष्पा सुदेशना और निमो की ये फरमाइश है। शीतलानगर दुर्ग से शिव और भगवान चंद्राकर और नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केरव, ज्योति रानी और गुरमंत की ये फरमाइश थी।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत मेरे हमसफर। इस फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल हैं कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

कालीगांव जाफराबाद से इस गीत को सुनना चाहते थे श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत संचित मोताला से कुमार प्रथमेश प्रणाली, कड़ा रोड से कुमारी सानवी देशमुख की ये फरमाइश थी और कुमार सरवत देशमुख भी यहीं से। विमल निकेतन अकोले की ये फरमाइश है। महेंद्र नागेश, पारस जयेश, ऋषभ संयम, सिद्धांत जैन और साक्षी जैन और इनके परिवार के सभी सदस्य मछली गोदाम कौदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ, प्रियंका, पूजा और ऋतु की फरमाइश आपने सुनी।

दो कलियां फिल्म का ये गीत आपने सुना। लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में साहिल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। विनायक नगर निजामाबाद से इस गीत को सुनना चाहा ज्योति श्रीहरि, राजकमल, विनोद कुमार, रामानंद और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा, पूनम वर्मा ने। मोहाली पंजाब से ये पत्र आया है। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर।

0: ये है विविध भारती।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एंटन चेखव की रूसी कहानी द प्रपोजल का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर, विवाह का प्रस्ताव। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं कामिनी कौशल, विनोद शर्मा और कमलाकर दाते। ये नाटक मधुप शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। आइए सुने नाटक विवाह का प्रस्ताव।

0: माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ दस्तक देकर ही अंदर चला आया।
1: और हम भी तुम्हें यूं ही बाहर नहीं जाने देंगे। आओ बैठो आइवन लोमो।
0: धन्यवाद
1: आइवन, तुमने तो हमें भुला ही दिया।
0: जी, एक उलझन के कारण मैं इधर आ नहीं पाया, इसके लिए बहुत लज्जित हूँ। लेकिन विश्वास कीजिए, आपकी याद सदा मेरे साथ रही।
1: और ये तुम्हारा स्नेह है जो तुम हमें अपना समझते हो। मगर आइवन, आज खैर तो है। ये फर का नया कोट, ये रंग बिरंगी कराकली टोपी और ये सफेद दस्ताने, आज तुम जा कहाँ रहे हो?
0: जी कहीं भी तो नहीं। बात यह है कि मैं आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लाया हूँ।
1: अच्छा,
0: अब आपसे कैसे कहूँ?
1: तो और कौन कहेगा?
0: ये भी ठीक है, और कौन कहेगा? जहाँ मैं ही कहूँगा। लेकिन थोड़ा पानी पिलवा दीजिए। हाँ, मुझे
1: अभी लो।
0: मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। डरता हूं अगर आपने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया तो मेरा क्या होगा?
1: पानी।
0: धन्यवाद।
1: अब ये मुझसे कुछ रुपया उधार मांगेगा और मैं इसे अंगूठा दिखा दूंगा।
0: देखिए, मैंने कई बार देखा है, महसूस किया है कि इस दुनिया में जितना आपको मेरा ख्याल रहता है किसी को नहीं रहता। मैं आपके इस अपार स्नेह के योग्य तो नहीं हूं।
1: आइवन, आज तो तुम्हारी बातें भी तुम्हारी पोशाक की तरह बिल्कुल नहीं है।
0: जी जी जी, ये बात नहीं है।
1: तो वो बात क्या है?
0: वो बात ये है। अभी कहता हूँ।
1: कहो।
0: बस मैं कहने ही जा रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: जहाँ हालत तक तो आ गई है
1: तो जबान पर ले आओ।
0: अच्छा,
1: शाबाश।
0: अपनी बेटी नथालिया का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए।
1: आइवन, मेरे प्यारे आइवन, एक बार फिर कहो, कहीं मेरे कानों ने वो तो नहीं सुन लिया जो पिछले कई वर्षों से मेरे दिल में था। कहो ना आइवन।
0: फिर किस मुंह से कहूं? कहां आप इतने बड़े जमींदार और कहां मैं आपका एक पड़ोसी छोटा सा जागीरदार।
1: ऐसा न कहो आइवन, ऐसा न कहो। जो जहां है वो वहीं रहेगा, लेकिन तुम पहले मेरे गले से लग जाओ। मैंने सदा तुम्हें अपनी बेटी नितालिया की तरह चाहा। अरे, मैं अभी तक यहीं क्यों खड़ा हूं? आइवन, तुमने देखा, मारे खुशी के मैं ये भी भूल गया कि मुझे नितालिया को तुम्हारे आने की खबर करनी चाहिए।
0: तो क्या नितालिया मुझे पसंद कर लेगी?
1: क्या कहते हो आइवन, तुम जैसे स्वस्थ सुंदर और नए नए कोट पहनने वाले गुलगुले जवान को भला कौन पसंद नहीं करेगा? मैं अभी नितालिया को भेजता हूं।
0: जी। चुबोकोप चले गए, अब नितालिया आएगी। क्या? अरे, मैं तो सिर से पांव तक कांप रहा हूं। अरे बाप, मेरा सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हुआ जा रहा है। ये क्या? मेरे होंठ कांप रहे हैं, मेरी बाहीं आंख फड़क रही है।
2: अरे, यहाँ तो आइवन लोमो विराजमान है।
0: आपको आश्चर्य हुआ कुमारी नितालिया?
2: जी हाँ।
0: क्या?
2: आप पर नहीं, बाबा की बात पर।
0: बाबा की बात पर?
2: जी हाँ, बाबा बोले कोई मटर खरीदने आया है।
0: ओह।
2: और मैं जल्दी में इन मैले कपड़ों में ही यहाँ चली आई। अंदर आंगन में मटर की फलियों में से दाने निकाल रही थी।
0: जी।
2: आपके लिए कुछ खाने को लाऊं?
0: जी जी जी जी, आप कष्ट न करें, मैंने अभी खाना खाया है। आप कृपया बैठ जाएं तो।
2: लीजिए, बैठ गई।
0: जी।
2: आज तो आप अपने घर से खूब बन ठन कर निकले हैं।
0: जी।
2: सच, इन नए कपड़ों में तो आप देखने में बहुत भले लगते हैं।
0: कुमारी नितालिया।
2: जी।
0: मेरी मेरी मेरी आपसे एक प्रार्थना है।
2: कहिए।
0: जी, मैं आज बहुत ठंड पड़ रही है,
2: आपके लिए कंबल लाऊं?
0: जी नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता था।
2: बात क्या है? आप इस तरह घबरा क्यों रही हैं?
0: देखिए कुमारी निथालिया, मैं आपके बाबा को तब से जानता हूँ जब आप अभी पैदा भी नहीं हुई थी, और ये तो आप भी जानती हैं कि आज मैं जिस जागीर का मालिक हूँ वो मुझे मेरे नाना नानी से मिली थी। मेरा मतलब है, मैं कहना ये चाहता था कि मेरे नाना नानी भी आपके बाबा को बहुत चाहते थे और आज भी हमारे घरों के आपसी संबंध बड़े अच्छे हैं। देखिए ना, आपके घर की दीवार मेरे घर की दीवार के साथ लगती है, आपके खेतों के साथ मेरे खेत हैं, आपकी सफेदा जमीन के किनारे मेरा चेरी का बगीचा खड़ा है।
2: क्षमा कीजिए
0: जी,
2: क्या क्या वो चेरी का बगीचा आपका है?
0: जी हाँ, क्यों
2: यूं नहीं सोच कर बताइए।
0: आप भी कमाल करती हैं, भला इसे सोचने की कौन सी बात है? और फिर क्या मेरे सोचने पर मेरा वो बगीचा किसी दूसरे का बन जाएगा?
2: लेकिन जो बगीचा हो ही दूसरे का, वो आपका कैसे बन सकता है?
0: मैं समझा नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
2: इसलिए कि वो बगीचा हमारा है।
0: अजी, मैं चेरी को उस बागीचे का जिक्र कर रहा हूँ जो आज तक कभी हरा नहीं हुआ, जिसके एक सिरे पर आपकी सफेदा जमीन है और दूसरे सिरे पर खाई है।
2: जी हाँ, मैं भी उसी बागीचे के लिए कह रही हूँ कि वो हमारा है।
0: कमाल है, ये तो मैं आज ही सुन रहा हूँ कि वो बागीचा आपका है।
2: और मैंने भी आज पहली बार सुना कि वो आपका है।
0: लेकिन मेरे बागीचे पर आप अपना कब्जा कैसे जता सकती हैं?
2: अरे, मगर वो बागीचा आपका कब से हुआ?
0: जब से मैंने होश संभाला।
2: फिर जब से आपने होश संभाला है, आप झूठ को सच समझ रहे हैं।
0: जी नहीं, आप अब सच को झूठ समझ रही हैं। देखिए कुमारी निकालिया, मेरे पास ऐसे कागजात हैं जिनमें ये साफ साफ लिखा है कि मेरी नानी की दादी ने वो बागीचा आपके दादा के काश्तकारों को बिना पट्टा लिखवाए खेती करने के लिए दिया था, और आपके दादा 40 साल तक हमारी उस जमीन की कमाई खाते रहे, और फिर आप ही की तरह जब आपके दादा ने भी हमारी उस जमीन का मालिक बनने की कोशिश की तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी।
2: देखिए, मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ जो मैं आपकी इस मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास कर लूं।
0: मैं जानता हूँ कुमारी निकालिया, आप इतनी बुद्धिमान भी नहीं है जो किसी दूसरे की संपत्ति पर अपना हक जताना छोड़ देंगी।
2: आइवन, इस प्रशंसा के योग्य केवल आप हैं।
0: जी,
2: आपका मुंह बंद करने के लिए मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि वो सूखा सड़ा बागीचा जिसकी कीमत 300 रूबल से किसी भी हालत में ज्यादा नहीं है, मैं आपको भेंट कर सकती
0: हूँ। कुमारी निकालिया, मैं आपकी उदारता का कायल हूँ, लेकिन आपको मेरी ही संपत्ति मुझे भेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। वो बगीचा तो मैं आपको भेंट कर सकता हूँ, मगर अब प्रश्न सिद्धांत का है, न्याय का है।
2: अन्याय भी ये है कि न्याय आप कर रहे हैं। 300 साल से जो बगीचा हमारे अधिकार में चला आ रहा है, आज उसे आप अपना बता रहे हैं।
0: फिर वही बात, आप किसी दूसरे की सुनती भी तो नहीं है। कुमारी निकालिया, हुआ यूं था कि आपके परदादा के काश्तकारों ने मेरी नानी की दादी को मकान बनाने के लिए ईंटें पकाकर दी थी, इसलिए कुछ बख्शीश के तौर पर मेरी नानी की दादी ने उन्हें
2: फिर वही दादी की नानी, नाना के दादा। अब मैं आपसे और कितनी बार कहूं कि वो बागीचा हमारा है, हमारा
0: जी
2: है।
0: नहीं जी नहीं जी नहीं, वो मेरा है। आप सुनिए तो, वो हुआ यूं था।
2: आइवन, अगर आप लगातार 2 दिन तक इसी तरह बहस करते रहेंगे और अपने घर से एक बढ़िया कोट पहनकर आते रहेंगे तो भी ये बागीचा हमारा ही रहेगा।
0: देखा है ना सीना दूरी। कुमारी निकालिया, मैंने आज तक कभी किसी की संपत्ति पर अपना हक नहीं जताया, मैंने आज तक कभी किसी की जमीन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश नहीं की।
2: इसीलिए आप अपनी ईमानदारी का सिला हमसे

0: करना चाहते हैं?
1: ओ, ओ, मेरे गले में कांटे उगाए हैं। ठहरिए जरा, पानी पी लूं तो बताता हूं आपको। मैं फिर कहता हूं कि वो बागीचा मेरा है, मेरा है।
0: ये चीख आपकी है, मगर बागीचा हमारा है।
1: जी नहीं, वो मेरा है।
0: वो बागीचा हमारा है और मैं आज ही अपने कारिंदों को वहाँ की सारी घास काटने के लिए भेजती हूँ।
1: क्या?
0: हाँ, मेरे आदमी अभी वहाँ पहुँच जाएंगे।
1: तो कान खोल कर सुन लीजिए, अगर मेरी धरती पर किसी ने कदम रखा तो मैं उसकी खाल में भूस भरवा दूंगा।
0: इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने अंजाम से वाकिफ हैं?
1: मैं कहता हूँ इन बातों में कुछ नहीं रखा। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो बागीचा मेरा है, मेरा है, मेरा है।
0: आइवन, अगर ये घर मेरा ना होता तो आप इससे भी कहीं ज्यादा ऊंची आवाज में चीख सकते थे, चिल्ला सकते थे, दहाड़ सकते थे।
1: कुमारी निताली, कुमारी निताली, अगर मुझे दिल का रोग ना होता, अगर मेरे पुट्ठों में दर्द ना होता तो आज मैं आपको बता देता कि किसी की संपत्ति पर आंख रखने का क्या परिणाम होता है। देखिए, अब भी भलाई इसी में है कि सीधी तरह से मान लीजिए कि वो बागीचा मेरा है।
0: नहीं, हमारा है।
1: जी नहीं, मेरा है।
0: हमारा है।
1: मैं कहता हूँ मेरा है।
2: जी क्या हो रहा है
0: बाबा? आप जरा की समझ में ये बिठाइए कि हमारा वो चेरी का बगीचा किसका है?
2: हमारा है और किसका?
1: आप अपनी बेटी की बोली में बोल तो रहे हैं, मगर कुछ पता भी है कि मेरी नानी की दादी ने यह बगीचा आपके दादा के काश्तकारों को थोड़ी सी मुद्दत के लिए ऐसे ही खेती करने के लिए दिया था और फिर 40 वर्ष तक वे अपना पेट और आपके दादा का घर भरते रहे।
2: आइवन, तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि उन काश्तकारों ने तुम्हारी दादी को उस बगीचे के पट्टे की सारी रकम चुका दी थी। विश्वास न हो तो गांव के पटवारी से या तहसीलदार की कचहरी से जाकर मालूम कर लो कि उस जमीन का लगान आज तक कौन भरता रहा।
1: फिर तो आप सरकार को भी धोखा देते रहे।
2: धोखा? हाँ, अपनी जमीन का लगान तुमसे सरकारी खजाने में भरवा के हम तुम्हें अवश्य धोखा दे सकते थे,
0: लेकिन हमने ऐसा भी नहीं किया।
1: मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता कि वो बागीचा मेरा है और मेरे पास इसका सबूत है।
2: नहीं आइवन, तुम ये साबित नहीं कर सकते।
1: क्यों नहीं कर सकता?
2: आइवन, तुम इस भ्रम को अपने दिल से निकाल दो कि हम तुम्हारा वो बगीचा हड़प कर जाना चाहते हैं। और अगर तुमने यूं ही चिल्लपो मचाकर यह साबित करने की कोशिश की कि वो बगीचा तुम्हारा है तो मैं उसे तुम्हारे हवाले करने की बजाय अपने किसी काश्तकार को यूं ही दे।
1: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं। बेटी भेंट करने की बात कहती है और बाप किसी और को दे डालने की धमकी देता है। मैं पूछता हूँ, किसी दूसरे की संपत्ति को आप इस तरह कैसे लुटा सकते हैं? क्या अधिकार है आपको?
2: ये तो मैं ही जानता हूँ मुझे अधिकार है या नहीं, लेकिन तुम अपनी जबान को काबू में रखो। मैं ऊंची आवाज सुनने का आदी नहीं।
1: तो हो जाएंगे, अब आपका वास्ता मुझसे पड़ा है।
2: आइवन, यूं ही आवेश में मत आओ।
1: वाह वाह, आप तो पड़ोसी होने के नाते मेरा बागीचा हड़प कर जाएं और मैं आवेश में भी नहीं।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तुम चुप हो जाओ।
1: मैं तो जैसे आपके इस आदेश की प्रतीक्षा में ही था। मैं कह देता हूँ, आप मेरे पड़ोसी नहीं है, मेरे पड़ोस में रहने वाले डाकू है।
2: क्या कहा?
0: बाबा, बाबा, इन्होंने आपको डाकू कहा?
2: अब मैं इसे क्या कहूँ?
1: जो मैंने आपको कहा है आप वही अपनी बेटी से भी कहिए।
0: बाबा, आप कुछ कहने के बजाय कुछ कीजिए।
2: मैं कुछ करूँ?
0: हाँ।
2: लेकिन मैं क्या करूँ?
0: आप अपने कारिंदों से कहिए कि वो बागीचे की सारी घास खोद लाए।
1: खोद लाए? कुमारी नितालिया, घास खोद लाना इतना आसान नहीं है।
2: इस बारे में आप अधिकार से बात कर सकते हैं।
1: आप मेरी यूं खिल्ली ना उड़ाइए। मैं अब इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा।
0: और जब इंसाफ होगा आप अदालत का दरवाजा तोड़ डालेंगे।
2: क्योंकि तुम इंसाफ उसे मानते हो जो इंसाफ के साथ खुद बड़ी बेइंसाफी।
1: हाँ, इसका फैसला अब अदालत में ही होगा।
2: आइवन, मैं तुम्हारी मुकदमेबाजी की लत से वाकिफ हूँ और मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पुरखों की सारी जिंदगियां अदालतों में ही।
1: देखे, मेरे पुरखों का अपमान मत कीजिए, उनकी ईमानदारी के चर्चे आज भी लोगों की जबान पर हैं। हाँ, आप अपने चचा की ईमानदारी का डंका जरूर बजाइए जो गबन के अपराध में आज भी जेल में आटा पीस रहे
2: हैं। तुम्हारा तो दिमाग चल गया।
0: इनके घराने में ठीक किसका था?
2: हाँ, इसका दादा संकी।
1: हाँ, दादा संकी था। आपकी माँ का भी तो ऊंट की तरह कोहान निकला हुआ था। मेरा दिल पानी।
2: अरे, तुम्हारा तो बाप पत्तेबाज था, क्रॉसवर्ड पजल भरा करता था।
0: आपकी नानी के मुंह में जबान नहीं ततैया मिस थी और वो हर किसी को काटने को दौड़ती थी।
1: मेरी बही ठंड के था जनजान लगे और आप मीठी जबान से हर किसी का गला काट रहे हैं। और ये कौन नहीं जानता कि चुनाव से पहले मुझे कुछ नहीं सुझाई दे रहा। मेरी टोपी कहाँ है?
2: अरे तुम मक्का हो, अरे भी।
1: लेकिन आपसे कोई मुकाबला नहीं है। मेरा दिल, यही मेरी टोपी। अब दरवाजा किधर है? मेरी टांग सुनो।
2: घसीट कर ले जाओ अपने आप को यहाँ से।
1: हाँ हाँ, जा रहा हूँ।
2: इतना और सुनते जाओ। हमारे घर फिर कभी पांव रखा तो हाथ से टांग, नहीं नहीं टांग से हाथ।

0: शांत हो बैठोगे। हाँ,
1: और अब यहाँ से सीधे अदालत में ही जाना। हाँ,
0: चला गया कमीना कहीं का।
1: आप हमें इस रीच पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे सदा चौकन्ना रहना चाहिए।
2: और आस्तीन के सांप का हमें सर कुचल देना चाहिए।
1: हाँ, नहीं तो ये हमारी संपत्ति पर कुंडली मार कर बैठ जाएगा।
0: निर्लज्ज का दुस्साहस तो देखो।
3: बोला, आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ।
1: कैसा प्रस्ताव?
0: अरे ब्याह का प्रस्ताव। कमीना, जलील, गुंडा कहीं का मेरी बेटी से ब्याह करना चाहता था।
1: आपने आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
0: अरे मैं क्या बताता, तुमने खुद नहीं देखा कि वो रीच का बच्चा कैसा छैला बनकर आया?
1: वो मुझसे ब्याह करना चाहते थे।
2: अरे अरे क्या हुआ बेटी नितालिया, क्या हुआ?
1: बाबा बाबा उन्हें बुला लाइए, अभी बुला लाइए।
2: क्या, अब उसे मैं बुलाना जाऊं?
1: हाँ बाबा, अभी जाइए, अभी जाइए बाबा। मेरा सर चकरा रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है।
2: अरे मगर बेटी, अभी हमने उसे यहाँ से इतने शानदार स्वागत से निकाला और अब वो दोबारा यहाँ आने के लिए कभी नहीं मानेगा।
1: बाबा आप अभी जाकर उन्हें किसी भी तरह मना लाइए, मैं उनके
2: अरे बेटी नितालिया, होश में आओ, ये क्या पागलपन है? हे भगवान, अब मैं कहाँ डूबने जाऊँ?
1: इससे पहले उन्हें बुला लाइए।
2: जाता हूँ बाबा, जाता हूँ, जा रहा हूँ।
1: आज उन्होंने फर का कैसा बढ़िया कोट पहन रखा था, फिर भी हमने उनका ऐसा सम्मान किया, कौन जाने अब वो आएंगे भी या नहीं।
0: नितालिया बेटी, हेलो, अब तुम अच्छी हो जाओ, वो आ रहा है।
2: कम वक्त अभी सीढ़ियों पर ही था, मगर अब मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, अब मैं तुम्हारे मामले में कभी नहीं बोलूंगा, तुम जानो और वो जाने।
1: वो कब आएंगे?
2: अरे भाई, उसके पर नहीं, पैदल आ रहा है।
1: आप उन्हें उठा कर क्यों नहीं ले आए?
2: ओ भगवान, तुम एक अच्छे भले आदमी को बेटी का बाप क्यों बना देते हो? मेरी तो मिट्टी खराब हो गई।
1: कैसे?
2: तुम्हारे कारण पहले मैंने उसे जली कटी सुनाई, उसे अपमानित किया और फिर उसे खड़े खड़े अपने घर से बाहर निकाल दिया, और अब
1: क्या क्या मेरे कारण?
2: और नहीं तो क्या?
1: बाबा अब आप मेरे साथ वैसा व्यवहार ना कीजिए।
2: अच्छा बाबा अच्छा, सारा दोष मेरा ही था। एक बेटी का बाप निर्दोष हो ही कैसे सकता है, और फिर वो भी अपनी बेटी की नजर में। लो वो आ गया और मैं अपने कमरे में जा रहा हूं।
4: मेरा दिल बड़े शोरों से धड़क रहा है,
1: और मेरे दिल को बड़ा चैन मिला है आपको यहाँ अपने पास देखकर।
4: वो बगीचा मेरा है।
1: जी हाँ, वो बगीचा सचमुच आप ही का है, आपके जाने के बाद मुझे याद आया।
4: मेरी टांगें सुन्न हो गई हैं, लेकिन वो बगीचा मेरी नानी की दादी से पहले भी हमारा था।
1: जी हाँ जी हाँ, हमसे भूल हो गई, आप कृपया क्षमा कर दी।
4: बात असूल की थी, सिद्धांत की थी, नहीं तो आप जाने सूखा हुआ बगीचा जो कभी हरा नहीं हुआ चीज ही क्या है।
1: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, अब आप कोई और बात कीजिए।
4: तो ठीक है, लेकिन देखिए ना, इसके अतिरिक्त मेरे पास ऐसे कई प्रमाण पत्र हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि मेरी नानी की दादी ने आपके दादा के काश्तकारों को।
1: जाने दीजिए, मैं अपनी भूल पर पहले ही बहुत लज्जित हूँ। ये बात कैसे चलाऊं? आप शिकार खेलने के लिए कब जा रहे हैं?
4: मैं फसल की कटाई के बाद मैं मुर्गाबी का शिकार खेलने जाऊंगा, लेकिन अब मैं क्या शिकार खेलूंगा?
1: क्यों?
4: अपने डब्बू को तो आपने देख ही रखा है ना, उस बेजबान की अब टांग भी टूट गई है।
1: ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ।
4: जी,
1: मगर उसकी टांग टूट कैसे गई?
4: ठीक से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे डब्बू की टांग किसी कुत्ते ने ही तोड़ी है, क्योंकि कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है,

0: और मेरे डब्बू की टांग क्या टूटी, मुझे यूं लगता है जैसे मेरी ही कमर टूट गई हो। मैंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था और अब जब मुझे उसकी जरूरत थी वह बेचारा अपाहिज हो गया। भाग्य पर किसी का जोर नहीं चलता।
1: डब्बू आपने लिया किससे था?
0: अजी ये पहले मेरो नोव के पास रहता था, तब ये अभी ढंग से भौंकना भी नहीं सीख पाया था कि इत्तफाक से इस पर मेरी नजर पड़ गई और मैं इस पर अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो गया। उधर मेरो नोव इससे बिछुड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने मेरो नोव के सामने 125 रूबल का ढेर लगा दिया तो वो कुछ न कह सका।
1: 125 रूबल?
0: हाँ, आपको अचंभा हुआ?
1: जी हाँ, इतने में तो हाथी आ जाता।
0: कुमारी निथालिया, मैं इसे हाथी का बच्चा ही समझ कर लाया था।
1: तब आपने कुत्ते के नहीं अपनी समझ के दाम चुकाए थे, नहीं तो मेरे बाबा मेरे लिए कालू 50 रूबल में लाए थे। और हमारा कालू आपके डब्बू से 1000 गुना अच्छा है।
0: मुझे तो इस पर भी संदेह है कि आपको 1000 तक गिनती आती है, नहीं तो आप अपने कालू का मेरे डब्बू से कभी मुकाबला नहीं करती।
1: मुकाबला हो ही कैसे सकता है, शेर का भेड़ से क्या मुकाबला।
0: जी
1: आइवन, हमारा कालू अभी बच्चा है। एक पूरा कुत्ता बनने में उसे कुछ समय लगेगा, लेकिन अब भी हमारे सारे प्रांत में ऐसा कोई कुत्ता नहीं जो जीदारी और फुर्ती में हमारे कालू का सामना कर सके।
0: तो सुन लीजिए कुमारी निथालिया, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कालू का जबड़ा बहुत छोटा है और ऐसे कुत्ते बच्चों की गेंद भी उठाकर नहीं ला सकते।
1: जबड़ा छोटा है?
0: जी
1: ये बात भी मैंने आज पहली बार सुनी है।
0: विश्वास कीजिए, आपके कालू का निचला जबड़ा उसके ऊपर के जबड़े की अपेक्षा बहुत छोटा है।
1: क्या आपने उसे कभी नाप कर देखा है?
0: मैं अब नाप कर दिखा सकता हूँ, आप उससे अपनी टांग पर कटवाइए। वैसे मैं ये मानता हूँ कि ऐसे कुत्ते जिनके जबड़े छोटे होते हैं वे दौड़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन शिकार पर उनकी पकड़ अच्छी नहीं होती।
1: जरा ये भी फरमाइए, आपका वो लंगड़ा खाज का मारा डब्बू
0: जी
1: किस राजघराने में से है, किस कुल का दीपक है?
0: आपको जब जरूरत होगी तो मैं आपको उसका गोत्र तक बता दूंगा, उसकी जन्म कुंडली भी दिखा दूंगा। अभी तो इतना ही सहन कर लीजिए कि डब्बू उस किस्म का कुत्ता है जो अपने मालिक के लिए आर्थिक संकट की स्थिति में समुद्र से मोती निकाल कर ले आते हैं, और आपका वो कालू घर वालों को काटे और चोर के आने पर दुम दबा कर भागे।
1: स्वामी भक्ति की ऐसी परिभाषा केवल आप ही कर सकते हैं, मगर हमारा कालू ऐसा नहीं है।
0: ना ऐसा नहीं है तो ऐसा वैसा होगा।
1: आप होंगे क्या? आप हैं
0: जी।
1: भला ये भी कोई बात है, पहले हमारे बगीचे को अपना बताया और अब अपने खाज मारे लंगड़े डब्बू को हमारे कालू से बढ़िया बता रहे हैं।
0: अच्छे को तो अच्छा कहा ही जाएगा।
1: लेकिन आप ऐसा कह नहीं रहे, आपका दिल मानता है कि हमारा कालू कुत्तों का बेताज बादशाह है, लेकिन आप फिर भी अपने लंगड़े की शान बघारे चले जा रहे हैं।
0: यही बात तो मैं अपने डब्बू और आपके बारे में भी तो कह सकता हूँ।
1: लेकिन सच क्या है?
0: आप ही कहिए, क्या आपके कुत्ते का जबड़ा छोटा नहीं?
1: कहाँ छोटा है?
0: छोटा है।
1: नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मेरा बस चले तो मैं आपके डब्बू को कमेटी वालों से गोली लगवा
0: दूं। और मेरा बस चले तो मैं वही गोली। फिर डूबने लगा।
1: आपको कुत्तों के बारे में इतना ही पता नहीं है कि
0: वो मेरा दिमाग फट रहा है। अब आप चुप हो जाइए।
1: जब तक आप ये ना मानेंगे कि हमारा कालू आपके डब्बू से 1000 गुना बढ़िया है, मैं कभी चुप नहीं होऊंगी।
0: यही बात है तो बेशक चिल्लाइए, चीखिए, लेकिन मैं आपके उस मरियल कुत्ते की शक्ल के मेमने को कुत्ता नहीं कहूंगा। अगर वो आपकी संगत में कुछ दिन और रह गया तो वो दिन दूर नहीं जब वो बावला हो जाएगा। ओ मेरा कंधा, मेरी आंखें, अरे गणपति गणपति गणपति।
1: और आपका कुत्ता तो जैसे टांग तोड़वाकर अमर हो गया है और अब उसे कुछ होगा ही नहीं।
0: मैं कहता हूँ खामोश हो जाइए, दुख से मेरा दिल फटा जा रहा है।
1: अब मैं चुप नहीं हूँगी।
2: अरे अरे अरे, ये फिर क्या हो रहा है?
1: बाबा बाबा, आप सच सच कहिए, हमारा कालू अच्छा है या इनका लंगड़ा?
0: पहले आप ये बताइए, आपके कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं? पक्षपात किए बिना कहिएगा कि कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं।
2: है, लेकिन फिर क्या हुआ पता है? हमारे कालू जैसा बढ़िया कुत्ता सारे प्रांत में नहीं।
0: मेरे डब्बू को छोड़कर आप ऐसा दावा जरूर कर सकते हैं।
2: हाँ, तुम्हारा डब्बू भी बड़ा गुणवान है। उसके कान खड़े और शरीर गठीला है, पिछली टांगे पतली लंबी सुडोल है, लेकिन उसमें दो ऐसी त्रुटियां हैं जिसके कारण उसे कुत्ता कहना एक अच्छी नस्ल के कुत्ते का अपमान कर।
0: देखिए देखिए देखिए, मुझे दिल की बीमारी है, वास्तविकता को झुटलाने की कोशिश न कीजिए। कुत्तों की वार्षिक दौड़ में मेरा डब्बू राजा साहब के कुत्ते के बराबर रहा था और आपका वो कालू

0: रसोई घर में बैठकर मक्खियां मारा कीजिए।
1: मक्खियां उड़ाने के लिए कहो बेटी, इनका दिल बड़ा कमजोर है। आइवन, मैं तुम्हें जंगल में जाकर शिकार खेलने से रोकता नहीं, क्या पता कोई जानवर तुम्हारा शिकार बनने से पहले तुम्हें ही अपना शिकार बना डाले।
2: अरे शिकारी को जानवर अपना शिकार बना ले और जानवर को अपना शिकार मैं बना लूं, ऐसा भी हो सकता है अगर किसी रात आप मेरे साथ जंगल में शिकार खेलने चले।
1: आइवन, मुझसे ऐसी बातें कहते तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
2: जब आप मुझसे ऐसी बातें बड़े गर्व से कहते हैं तो मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए?
1: तुम्हारा तो शर्म,
2: देरी कितनी लगती है, लेकिन कारण भी तो बताइए। और जो स्वयं न समझ सके और दूसरों को समझा न सके उससे तो आप कुछ कहेंगे नहीं।
1: मैं कहता हूँ जहर उगलने से बाज आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा।
2: आप क्या सिर फाड़ेंगे, गलियों में बच्चे तक जानते हैं। अरे मेरी जान, आपकी पत्नी भरे बाजार में आपको पीट दिया करती थी।
1: और तुम भी तो अपनी उस नौकरानी से छिपते फिरते हो।
2: मेरी टांग टूट गया। डॉक्टर
1: कमीना, बेशर्म, गधा,
0: घोड़े पर सीढ़ी लगाए और स्वयं को शिकारी कहलवाए। पापा जरा देखिए तो इन्हें हुआ क्या है। आइवन, बाबा आइवन चले गए।
1: क्या मिताली, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? खिड़की खोल दो, तो मेरा दिल भी टूट गया। बेटी तुम मेरा एक काम करो।
0: क्या बाबा?
1: मुझे मेरा पिस्तौल ला दो।
0: जाने दीजिए बाबा, अब आप मरे को क्या मारेंगे?
1: अरे बेटी, मैं पिस्तौल अपने लिए मंगवा रहा हूँ।
0: अपने लिए?
1: हाँ, मैं आत्महत्या कर लूंगा।
0: नहीं बाबा नहीं।
1: अरे पिस्तौल नहीं तो मुझे चाकू ही ला दो, मैं अपना गला काट लूंगा।
3: ला दो ना।
1: अरे आइवन तो अभी जिंदा है। आइवन
0: जिंदा है?
1: लो पानी पी लो, पानी पी लो।
3: मैं कहाँ हूँ?
1: तुम जहन्नुम में हो जो तुम्हारे आने से पहले जन्नत थी। अब तुम घर से उठ के बैठो और नितालिया से ब्याह कर लो।
3: क्या?
1: हाँ बाबा, हाँ, नितालिया ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है और वो तुम्हें बहुत चाहती है।
3: क्या सच?
1: चुप, नितालिया बेटी लाओ, अपना हाथ इधर लाओ।
0: बाबा।
1: आइवन जी, ये लो नितालिया का हाथ, मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ, और अब तुम लोग मेरा पीछा छोड़ो।
3: ओ बाबा, मैं आपका किस्मत से शुक्रिया अदा करूं। बाबा, मैं बिल्कुल अच्छा हो गया।
1: अच्छा?
3: जी हाँ। तो वो बात क्या थी? मुझे कुछ कुछ तो याद आ रही है।
0: मैं बताऊं? मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
1: और मेरा भी जी का जंजाल कटा।
3: हाँ याद आ गई, ये आपको मानना पड़ेगा कि मेरा डब्बू आपके कालू से कई गुना बढ़िया है।
0: ये कई गुना घटिया है।
3: जी नहीं,
0: ये आपको मानना पड़ेगा।
3: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
0: मैं कहता हूँ घटिया है।
3: जी नहीं, मैं कहता हूँ बढ़िया है। आश्रम की कुछ मैं तो अभी से मैं कहता हूँ बढ़िया है।
0: बढ़िया नहीं है, घटिया है।
3: मैं कहता हूँ बढ़िया है। तुम लोग
1: जी है, मैं ही यहाँ पे।

अभी आप सुन रहे थे एंटन चेखव की रूसी कहानी द प्रपोजल का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर विवाह का प्रस्ताव। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे कामिनी कौशल, विनोद शर्मा और कमलाकर दाते। ये नाटक मधुप शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में सन 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

कांवर की महिमा अपरंपार है। श्रद्धा और भक्ति सहित जो भक्त भी ओंकारेश्वर के द्वार पर आता है वो सर्व सिद्धि को प्राप्त होता है। एक समय की बात है, एक दुखियारी इस मृत्यु लोक में यातनामय जीवन व्यतीत कर रही थी। तभी एक भक्त राज ने उस दुखिया को भगवान रुद्र के चरणों में कांवर अर्पित करने के लिए प्रेरित किया। उस स्त्री ने अपने मन में कांवर चढ़ाने का दृढ़ संकल्प ले भगवान शिव के चरणों में कांवर चढ़ाई और महादेव ने प्रसन्न होकर उस स्त्री को इस नाशवान जगत के रहस्य बताकर मोक्ष का मार्ग दर्शाया।